जब मन में सुकून, विश्वास और अच्छे विचार बस जाते हैं तो जिंदगी की हर चुनौती छोटी लगने लगती है। बाहरी हालात जैसे भी क्यों ना हो, असली ताकत हमारे मन के भीतर ही होती है।

और गीतों भरे सफर पर चलते चलते हम और आप भोर सुहानी के अंजाम पर पहुंच ही चुके हैं। तो भाई चलते चलते आपको एक बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ छोड़े जा रहे हैं, और इस गीत के साथ ही आप सुरभि को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तो सुनिए ये गीत और इसी के साथ सुरभि को दीजिए इजाजत।

0: నిలయంలో సమయం 6 గంటలకు వస్తుంది. మరికొద్దిసేపట్లో న్యూస్ హెడ్ లైన్స్ వింటారు.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है. कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है. प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा. उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा. श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है.
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है.
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी. उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी. कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है. इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी.

0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade. But today, trust has become just as important alongside trade.
2: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
1: Mr. Modi further said the country is investing across sectors that will drive growth, innovation and opportunity for generations to come. He said that this is a defining period in India's journey where aspirations are reaching new heights. Mr. Modi said that at the G7's meeting in Evian, he emphasized the importance of partnerships based on trust. Prime Minister said India's message to the G7 summit was clear that global governance will only be effective when it is inclusive. Earlier, Modi was welcomed with the message Bonjour Modi or Hello Modi and chants of Bharat Mata Ki Jai. The Indian community in France gathered in large numbers chanting slogans of Modi Modi and Bharat Mata Ki Jai. Prime Minister Narendra Modi has left for New Delhi after concluding his successful and productive visit to Paris, marking the third leg of his two-nation visit to France and Slovakia. In a social media post, Mr. Modi said that the India-France friendship will become even stronger in the times to come as he concludes his visit to France. Prime Minister said, "This visit to France has been extensive when it comes to engagement and outcomes." French President Emmanuel Macron recorded a special farewell video message in Hindi for PM Modi as he was wrapping up his trip to France.
3: Priye Mitre Narendra, Mujhe Bahut Khushi, we aapka Nice, Evian, or Paris. Main ise saath ve daure ke liye swagat karke France aur Bharat ki dosti.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

ऑल राइट फोक्स, नमस्ते, हेलो, आदाब, मैं आपका सबका स्वागत है. गुड मॉर्निंग हैदराबाद एंड सिकंदराबाद एंड वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ नमस्ते हेलो आदाब ऑन एफएम रन 101.9 मेगाहर्ट्ज़ फ्रॉम नाउ टिल 1 PM. वी विल बी टुगेदर एंड आई विल बी योर कंपेनियन ब्रिंगिंग सम मेलोडीज दैट क्रॉस बॉर्डर्स, स्टोरीज दैट टच द हार्ट एंड रिदम एंड राइम्स दैट विल ब्राइटन योर डे. सो वेदर यू आर एट वर्क, एट होम और ऑन द मूव, सो लेट्स मेक दीज आर्ट्स अनफॉरगेटेबल विथ म्यूजिक दैट स्पीक्स एवरी लैंग्वेज ऑफ द इमोशन. है ना कमाल की बात. तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो पर हमारा एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है नमस्ते हेलो आदाब, और मैं हूँ आपका मेज़बान रेडियो मैन. जी हाँ, तो इसी नाम से मुझे बुलाया जाता है और मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा तकरीबन 2 बजे तक. तो नमस्ते हेलो आदाब का सफ़र जो रहेगा वो 1 बजे तक रहेगा, और हम यहाँ पर आपके दिलों को छूने वाले कुछ ऐसे नगमे, साथ ही साथ हम आपके लिए कुछ यादगार जज्बाती जो लम्हात हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे. तो यूं ही हमारे साथ बने रहिए. सो आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी. हाउ मेनी ऑफ योर

नमस्ते लो आदाब, एक बार फिर से आपको याद दिला दें, आपने अपने रेडियो सेट पर ये खास कार्यक्रम हमारा आपने ट्यून किया है। एक बार आपको फिर से कह दें कि मेरा नाम है रेडियो मैन और हम चाहते हैं कि आप हमारे शो से जुड़ें और कुछ जो मैसेजेस हैं वो भी आप हमें भेज सकते हैं। हमारे मैसेजेस का जो नंबर है वो है 0402324822 और ये जो गाना है दैट वॉज़ रियली गुड एंड As come on over, baby fades. It leaves behind more than just a beat. It leaves a memory of Christina Aguilera. Stepping into her own spotlight, she transformed from teen sensation to pop powerhouse, showing the confidence can be catchy and soulful. Invitation, come on over, baby, and became a mantra for a generation ready to embrace joy, love, and self-expression. So the next time you hear this track, remember, it's not just a pop song. It's Christina Aguilera telling the world she's here to stay. And I am also here to stay until 2 o'clock. And we just started here in this edition of Namaste Lo Adab. जी हाँ दोस्तों, हमने अभी तो शुरुआत की है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी सौगात, ये पेशकश, वो सब कुछ पसंद आएगी। तो आइए इसी का एक ऐसा ही हिंदी वाला गाना हम सुनने की कोशिश करेंगे और आपके लिए तीसरी मंजिल से गाना आ रहा है।

एक से बढ़कर एक शानदार सिनक में आप सुन रहे हैं 1956 की ये फिल्म चोरी चोरी, जी हाँ, जिसे डायरेक्ट किया था अनंत ठाकुर ने और ये एवीएम प्रोडक्शन तले बनी थी। राज कपूर जो कि सागर के किरदार में थे, नरगिस कम्मू के किरदार में और प्राण सुमन कुमार के किरदार में, और जॉनी वॉकर, डेविड मुखरी, भगवान दादा, ये दूसरे अन्य कलाकार भी थे। और म्यूज़िक शंकर जयकिशन का, हसरत जयपुरी के बोल शैलेंद्र ने भी साथ मिलकर लिखे थे इस फिल्म के गाने। और ये दरअसल हॉलीवुड की जो क्लासिक फिल्म थी, इट हैपन्ड वन नाइट, 1934 की वो जो फिल्म थी उस पर आधारित ये फिल्म उन्होंने बनाई। दिस वॉज द लास्ट फिल्म वे राज कपूर एंड नरगिस स्टार्टेड यू नो स्टार्ट टुगेदर एज लीड्स। स्टोरी बहुत ही शानदार थी, कई बार इसको रीमेक भी किया गया। आप देखेंगे कि जो दिल है कि मानता नहीं आमिर खान और पूजा भट्ट की फिल्म है, इसी पर आधारित है। आजा सनम मधुर चांदनी में हम चांद और नगमे और जितनी आपके रोमांटिक गाने हैं शायद चांद को देखकर ही लिखे गए हैं। तो इतना खूबसूरत इम्पैक्ट है गाने का कि इट्स अ सिंबल ऑफ मूनलाइट रोमांस इन हिंदी सिनेमा एंड इट्स अ जेंटल रिदम एंड पोएटिक इमेजरी कैप्चर द एस इनोसेंस ऑफ द लव। है ना कमाल की बात। मन्ना डे वंस रिकॉल कि राज कपूर पर्सनली रिक्वेस्टेड हिम फॉर दिस ड्यूट, बिलीविंग हिज वॉइस वुड ब्रिंग अ प्लेफुल सिंसियरिटी ऑपोजिट लता स्वीटनेस। जी हाँ, द केमिस्ट्री ऑफ राज कपूर और नरगिस ऑन स्क्रीन कंबाइंड विद द वॉइसेस मेड इट अनफॉरगेटेबल। शायद इसी वजह से हम आज ये नगमे आप तक पहुंचा पा रहे हैं। जी हाँ, तो नमस्ते, हेलो, आदाब। में आपने ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुना जब राज कपूर और नरगिस ने अपनी आखिरी फिल्म साथ में की और उनका जो जादू है वो हमेशा के लिए यादगार बन गया। और उसी फिल्म से निकला एक ऐसा गीत जो दिलों को महसूस करवाता है कि चांद से भी रोशन है हमारी पोएट्री। और खूबसूरत आवाज़ें, सब कुछ आपने सुना। तो आइए, 10:33 हुए हैं तो हम आपको लिए चलते हैं एक और दूसरे गाने की तरफ। हमारा जो मकसद है वो ये है कि जो चुनिंदा नगमे नगीने हैं हिंदुस्तानी सिनेमा में वो आप तक पहुंचाएं, साथ ही साथ यहाँ वहाँ और हो सके तो हम वेस्टर्न म्यूज़िक से भी ऐसे कुछ गाने आप तक पहुंचाएंगे। तो नमस्ते, हेलो, आदाब की जो अगली पेशकश है वो है हेमंत दा की आवाज़ में, तेरी दुनिया में जीने से। ये भी एक पुरानी फिल्म है, हाउस नंबर 44, हाउस नंबर 44।

वही वाह, क्या कमाल की मौसीकी है। बहुत ही दिलकश और दिल फरेब गाना आपने सुना। हाउस नंबर 44, 1955 में ये फिल्म आई थी। एम के बर्मन ने जिसे डायरेक्ट किया था और एस डी बर्मन ने इसके संगीत से सिंचोया। और साहिर लुधियानवी के गीत थे और देवानंद, कल्पना कार्तिक, के एन सिंह और प्राण ने इसमें काम किया था। नवकेतन के बैनर तले ये फिल्म थी। फिल्म की स्टोरी बहुत ही आसान थी। ये स्टोरी है अशोक की, जो कि देवानंद ने जिसकी किरदार कशी की थी। एक बहुत ही गरीब आदमी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने हालात की वजह से जुर्म की दुनिया में कदम रख देता है। लेकिन उसकी मुलाकात निम्मो से होती है, कल्पना कार्तिक, और वो उसके फिल्म यानी कि जो इश्क में मुब्तला हो जाता है। एंड दैट आल्सो रिप्रेजेंट्स इनोसेंस एंड होप। अशोक और निम्मो की ये जो जोड़ी सर्वाइवल, मोरालिटी के ऐसे चीज़ों पर सवाल उठाती है, और ये फिल्म हमेशा याद रखी जाएगी फिल्म नुआ के लिए। और जो एटमॉस्फियर देवानंद ने क्रिएट किया था, काफ़ी बेहतरीन था। देवानंद का एक ब्रूडिंग चार्म है, साहिर की बहुत ही गहराई से लिखी हुई शायरी है। शायद इसी वजह से इस फिल्म में हेमंत दा की जो जो सिग्नेचर गाना है वो काफ़ी डेप्थ है, वेलवेटी है, खूबसूरत अंदाज से गाया गया है। और कुछ जगहों पे तो ऐसा भी महसूस होता है कि शायद ये कहीं मेडिटेशन की वजह न बन जाए, और हमारे लिए जो दर्द और कर्ब की कैफियत है जो हमारे अंदर होता है ना, वो इसको भी बयान करता है। तो आपने बेहतरीन सा गाना सुना। तो हाउस नंबर 44 में नगमा था जो जिंदगी के दर्द को अल्फाज में उतार देता है, और तेरी दुनिया में जीने से हेमंत कुमार की गहरी आवाज़, साहिर लुधियानवी की दर्द भरे अल्फाज और एस डी बर्मन के सुर। ये गीत एक आईना है जो हमें जिंदगी की कठिनाइयों और बल्कि जो कर्ब है उसका चेहरा दिखाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और शानदार सा गीत। तो हम चाह रहे हैं कि ढेर सारी डाइवर्सिटी रहे हमारी प्लेलिस्ट में। हमने आशा भोंसले, मोहम्मद रफ़ी के नगमे सुनाए, फिर लता मंगेशकर, मन्ना डे को भी सुना आपने, हेमंत कुमार को भी सुना। अब मौका है मुकेश को सुनने का।

ऑलराइट, तो हमारा भी सफ़र बहुत ही हसीन है, लेकिन फ़िलहाल हैदराबाद में बारिश नहीं हो रही है। दो मरतबा बारिश हुई, फिर उसके बाद शायद नज़र नहीं आई। कल शाम रात में कुछ बारिश हुई, लेकिन मौसम का जो हाल है वो बुरा है, क्योंकि गर्मी उसी तरह बरकरार है। गर्मी का गायब होना अभी तक हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो जब तक के बरसात ना हो, बादल गरजे नहीं और बेपनाह बारिश ना हो, तब तक शायद मौसम ऐसा ही रहेगा। बल्कि 20 तारीख तक तो ये कहा जा रहा है कि मौसम थोड़ा गर्म भी रहेगा। तो 20 दिन हो चुके हैं जून के महीने के, और अभी भी कहीं ना कहीं हमें बादल का आना जाना नज़र नहीं आ रहा है। तो खैर, बात करते हैं सुहाना सफ़र और ये मौसम, हसीम मुकेश की खूबसूरत आवाज़, सलील चौधरी की मौसीकी, शैलेंद्र के बोल, और मूड है बहुत ही जॉयफुल, रिफ्लेक्टिव, सेलिब्रेटिंग द नेचर्स ब्यूटी, है ना। आप कभी सड़कों पर सफ़र करते हैं या फिर गांव के देहात जाते हैं, वहाँ पर ट्रैफिक नहीं होता है और आपको लगता है कि वाह, ऐसा सफ़र होना चाहिए। तो सिटीज़ में तो बहुत मुश्किल है, समझिए, हैदराबाद में तो काफ़ी मुश्किल है, ये हो नहीं सकता। सलील चौधरी ने इससे इंस्पिरेशन ली थी कि लश लैंडस्केप ऑफ दार्जिलिंग कंपोजिंग दिस ट्रू सॉन्ग। मुकेश ने उस आवाज़ को कैरी किया जो वादियों से निकलती है, पहाड़ों चट्टानों से निकल कर आपके पास दोबारा लौट कर आती है, आपसे ही टकराती है। शैलेंद्र के बोल ने इसे एक कह सकते हैं कि नेचर का अमली चामा पहनाया था, और लुकिंग फॉर दैट कंपेनियन इन लव, द सॉन्ग आउटडोर शूटिंग इन द हिल्स गेव इट ऑथेंटिसिटी एंड यू कैन ऑलमोस्ट फील द ब्रीज इन एवरी नोट, है ना। तो जब वो गाना बज रहा था तो मुझे लगा था कि स्टूडियोज में भी कहीं ना कहीं एक नेचर की ठंडी हवा मेरे चेहरे पर आ रही है। तो नमस्ते, हेलो, आदाब। मैं दोस्तों, आपने 1958 की ये फिल्म मधुमती से आपने नगमा सुना जो आज भी हमेशा नेचर की तरह तरोताज़ा है। सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन, मुकेश की आवाज़, सलील चौधरी का जादू, शैलेंद्र के अल्फाज, ये गीत ज़िंदगी का सफ़र को एक यादगार बना

वाह, अमेजिंग सॉन्ग। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। गाइड 1965 की ये यादगार फिल्म विजय आनंद ने डायरेक्ट किया था। आर के नारायण की जो नावल थी द गाइड, उस पर आधारित थी। और देवानंद राजू के किरदार में, वहीदा रहमान रोजी के किरदार में, और किशोर साहू, लीला चटनीस, SD बर्मन की मौसीकी, शैलेंद्र के खूबसूरत गीत। राजू एक चार्मिंग टूर गाइड है और वो रोजी के इश्क में गिरफ्तार हो जाता है। और रोजी, जो कि पहले से शादीशुदा है और निगलेक्टेड है समझिए, वो एक डांसर बनना चाहती है। और इसी पर ये फिल्म आधारित है, क्योंकि सोशल नॉर्म्स जो होते थे उस ज़माने में काफ़ी सख्त होते थे, लीडिंग टू ट्रायम्स एंड ट्रेजडीज। और ये फिल्म इस बात का सबूत है कि उस ज़माने में बोल्ड थीम्स फीमेल इंडिपेंडेंस को लेकर और स्पिरिचुअल रिडेम्पशन और ब्रेथ टेकिंग सिनेमाटोग्राफी, ये सभी चीज़ें इसको एक अमर फिल्म बना देती हैं। द सॉन्ग बिकेम एन एंथम ऑफ फ्रीडम, सेल्फ डिस्कवरी। वहीदा रहमान का पोर्ट्रेयल, रोजी का जो किरदार है, वो डांसिंग इन द ओपन फील्ड सिंबलाइजेस कि अब जो औरतें हैं, ख्वातीन हैं, उन्होंने समाज की जो बेड़ियां हैं, जंजीरें हैं, उनको निकाल कर फेंक दिया है, और ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द सोसाइटल चेन्स, है ना कमाल की बात। तो दोस्तों नमस्ते और आदाब। में 1965 की ये फिल्म गाइड से हमने एक नगमा आपको पहुंचाया, ज़िंदगी को नई रोशनी में महसूस करने वाला ये नगमा है। आज फिर जीने की तमन्ना है और मरने का इरादा है, लता जी की आवाज़ में, शैलेंद्र के अल्फाज, SD बर्मन का सुर। ये गीत एक औरत की आज़ादी को पैगाम है और एक नई जिंदगी का एहसास है। तो आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक दूसरा अहम गीत, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मैं चाह रहा था कि ब्रेक लूँ, लेकिन हम बात कर सकते हैं आराधना फिल्म की, जहाँ पर SD बर्मन की ही मौसीकी है, लेकिन इस बार माइक के पीछे वो खुद हाजिर हैं। तो आइए मिलकर सुनते हैं सफल होगी तेरी आराधना, और मुझे उम्मीद है कि आपकी भी कोई भी आराधना है वो सफल होगी।

दोस्तों, अब तो गाना ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, और लेकिन एक सुकून छोड़ जाता है गाना कि आराधना चाहे मोहब्बत की हो या ज़िंदगी की, हमेशा सफल होती है। SD बर्मन की आवाज़ एक सच्चाई थी जो सुरों में घुल कर हमेशा के लिए अमर हो गई। विल टेक अ क्विक ब्रेक फॉर द न्यूज़ हेडलाइंस।

0: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
0: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम, तुम,
1: तुम, तुम।
0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

मुझे उम्मीद है कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम भी कहीं नहीं जा रहे हैं। हम यहाँ पर हैं आपके साथ, लेकिन आपके साथ ही रेडियो के इस माध्यम से हम कर रहे हैं दुनिया का दौरा। एंड इवन इन पेरिस 19

0: 1967 की ये फिल्म थी। शक्ति सामंता ने जिसे डायरेक्ट किया था, और शमी कपूर, शर्मिला टैगोर, प्राण और राजेंद्र नाथ ने इसमें बहुत अहम किरदार अदा किए। शंकर जयकिशन की मौसीकी, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने मिलकर इसके बोल और गीत लिखे। प्रोडक्शन थी शक्ति फिल्म्स। दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट हिंदी मूवी शॉट एक्सटेंसिवली अब्रॉड। तो उस जमाने में बाहर जाके शूटिंग करना इतना आसान नहीं था, लेकिन 1967 में हिंदुस्तान की ये पहली फिल्म थी जिसने शोकेस किया पेरिस को, जेनीवा को, बेरूत को। एंड इट आल्सो टेल्स द स्टोरी ऑफ दीपा, जो कि शर्मिला टैगोर ने दीपा का किरदार किया। एक नौजवान लड़की है जो प्यार, इश्क, मोहब्बत की तलाश में है। उसी तरह सैम, जो शमी कपूर है, हु विंस हर हार्ट अमिड्स मिस्टेकन आइडेंटिटीज। जहाँ पर क्राइम है, ग्लैमर है, सब कुछ है, एक मसालेदार फिल्म है। द फिल्म इज रिमेम्बर्ड फॉर इट्स एक्सॉटिक लोकेशंस, स्टाइलिश कॉस्ट्यूम्स और शमी कपूर की फ्लैम्बॉयंसी चार्म का क्या कहना। मोहम्मद रफ़ी और शर्मिला टैगोर ऑन स्क्रीन आप देखेंगे। इस में सिंगर्स में आप देख सकते हैं शैलेंद्र के बोल थे, और ये एक ड्यूट गाना था, आइकॉनिक है, जहाँ पर शमी और शर्मिला दोनों मिलकर एक किस्म की आँख मिचोली चीकी बैंटरिंग करते हैं। रवि साहब की एनर्जेटिक वॉइस है दैट मैच शमी कपूर मिस्चीवियस स्क्रीन प्रेजेंस, और शर्मिला के जो एक्सप्रेशंस है वो काफ़ी एलूर और इनोसेंस को ऐड करते हैं, है ना कमाल की बात। तो दोस्तों, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, आज भी ये दिल को मुस्कुराहट देने वाला नगमा है। और जहाँ पर रफ़ी साहब की आवाज़ है, शर्मिला जी की अदाएँ हैं, और शमी कपूर का जो शौकिया अंदाज है वो भी है, तो ये गीत मस्ती भरा सफ़र है। तो इस सफ़र को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये सफ़र है सुहाना, जैसे हमने कहा था, और पेरिस की सैर भी हो गई, एन इवनिंग इन पेरिस। तो चलिए, अब आपको हम लिए चलते हैं कश्मीर की वादियों में, कश्मीर की कली से एक और गाना, जहाँ पर अगेन यही जोड़ी है, शमी कपूर और आपके शर्मिला टैगोर। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, तो उसके बाद आएंगे दीवाना हुआ बादल।
1: మీరు రిటైర్మెంట్ కి సిద్ధంగా ఉన్నారా? మీరు జీవితంలో ఏ దశలో ఉన్నప్పటికీ పదవి విరమణ అనివార్యం. ప్రణాళికతో మీ భవిష్యత్తుకు ధీమా. యూటీఐ పెన్షన్ ఫండ్ వారి ఎన్పీఎస్ అనేది పిఎఫ్ఆర్డిఏచే నియంత్రించబడి పన్ను ఆదా చేసే మార్కెట్ తో అనుసంధానం కలిగిన ఉత్పత్తి. 400,000 కోట్లకు పైగా ఏయుఎం నిర్వహణ, పాన్ ఇండియా ఉనికితో దీర్ఘకాలిక వృద్ధి. యూటీఐ పెన్షన్ ఫండ్ తో పదవి విరమణకు సిద్ధంగా ఉండండి. పెన్షన్ ఫండ్లు మరియు సెక్యూరిటీల్లోని అన్ని పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్క్ లకు లోబడి ఉంటాయి.

एक और बहुत ही दिलचस्प और खूबसूरत गीत आपने सुना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये गाना पसंद आया होगा। ओपी नैयर की मौसिकी में मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ में आपने बेहतरीन रोमांटिक, प्लेफुल और फुल ऑफ नेचुरल इमेजरी वाला गाना सुना। और इस फिल्म का क्या कहना। जी हाँ, कश्मीर की कली अगेन शक्ति सावंता के बैनर के तले शमी कपूर, शर्मिला टैगोर, प्राण और नज़ीर हुसैन और इसके बोल लिखे थे SH बिहारी ने। राजेश, जो कि शमी कपूर ने उसका किरदार किया था, एक पैसे वाला यंग डायनामिक और बदतमीज़ किस्म का आदमी है, जो कि किसी वजह से कश्मीर की तरफ ट्रैवल करता है स्पेशली टू स्केप हिज फादर्स प्लान फॉर हिज मैरिज। देयर ही मीट्स एंड फॉल्स इन लव विद अ लोकल फ्लावर सेलर राजेश्वरी, जो कि है शर्मिला टैगोर। द रोमांस ब्लॉसम अमिट्स द सीनिक ब्यूटी ऑफ कश्मीर। फिर क्या कहना, कश्मीर और फिर प्यार ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता।

लेकिन हमेशा की तरह समाज में ये ऐसी चीज़ें अड़चने आ जाती हैं दैट फेस लॉट्स ऑफ हर्डल्स ऑफ क्लास डिफरेंसेस एंड हिडन ट्रूथ. द फिल्म इज़ रिमेम्बर्ड फॉर इट्स ब्रेथ टेकिंग लोकेशंस. अगर आप जाएंगे कश्मीर तो देखेंगे कि डाल लेक होने दीजिए या फिर निशात बाग या फिर शालीमार बाग, ये जितने बागात हैं वो अभी भी ऐसे ही रोशन हैं या फिर उनके अंदर इसी तरह फूल खिलते हैं, ये आपको बताना है. शम्मी कपूर की फ्लैम्बॉयंट एनर्जी, शर्मिला टैगोर की ये डेब्यू फिल्म थी हिंदुस्तानी फिल्मों में, और कश्मीर की कली यानी कि कश्मीर की लड़की का किरदार बखूबी उन्होंने निभाया. द डुएट बिगेम वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लव सॉन्ग्स ऑफ 1960s, क्योंकि रफ़ी साहब के पैशनेट डिलीवरी थी, आशा जी की स्वीटनेस ने इसे एक लाफानी नगमा बना दिया, और है ना कमाल की बात. तो दोस्तों आपने गाना सुना दीवाना हुआ बादल, और ये गीत मोहब्बत और कश्मीर की खूबसूरती का एक बड़ा पैगाम है. तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें कौन कौन से दूसरे नख़मे हैं. तो आपको एक बार फिर से याद दिला दें, हमारा जो शो चल रहा है वो है नमस्ते हेलो आदाब, और मैं हूँ आपका रेडियो मैन. हम पहुँच रहे हैं रेडियो की तरंगों के संग जो कि 101.9 के माध्यम से. हमारा जो अगला गाना है आइए मिलकर सुनते हैं, और जिसका मुझे था इंतज़ार वो गाना आ गया है, वो घड़ी आ गई है, तो मिलकर सुनेंगे ये.

वेल ब्यूटिफुल ट्रैक है ना, कमाल की बात। नमस्ते, हेलो, आदाब मेरे दोस्तों। वी हैव रिवाइंडेड आवर सेल्व्स टू 1978। बॉलीवुड गेव अस वन ऑफ इट्स मोस्ट स्टाइलिश थ्रिलर्स, डॉन। जी हाँ, ये जो लफ्ज़ है हमने हिंदुस्तानी सिनेमा जगत में पहली बार सुना, क्योंकि हॉलीवुड में तो था ही लेकिन हिंदुस्तानी सिनेमा में नहीं था। फ्रॉम दिस कल्ट क्लासिक केम अ सॉन्ग दैट स्टिल स्पार्कल्स विद ग्लैमर, जिसका मुझे था इंतज़ार। किशोर कुमार की खूबसूरत आवाज़ और साथ ही साथ लता मंगेशकर ने उनका साथ दिया, और जीनत अमान की एलिगेंस, अमिताभ बच्चन का करिश्मा, दोनों मिलकर ऐसा ट्रैक बनाया जो कि रोमांस से भी बहुत ज़्यादा सुपर हिट था। सो इट वॉज मच ऑफ द एंटिसिपेशन, एक्साइटमेंट एंड स्टाइल रोल्ड इन टू मेलेडीज़, है ना कमाल की बात। कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी, अनजान के बोल और रोमांटिक स्टाइलिश फुल ऑफ एंटिसिपेशन, तो कहीं ना कहीं ये चार्म जरूर देखने को मिलता है। एक कॉन्फिडेंट है, परफेक्टली मैचिंग द फिल्म की जो थीम है उसमें बराबर ये जुड़ता है, बैठता है ना। तो डॉन बहुत ही शानदार सी फिल्म रही, क्योंकि डॉन एक क्राइम थ्रिलर थी, रुथलेस अंडरवर्ल्ड डॉन की, जिसे अमिताभ बच्चन ने प्ले किया, एंड वो पहले ही दौर में मर जाते हैं, लेकिन पुलिस रिक्रूट विजय, जो एक लुक अलाइक है, वो उस गैंग में मिल जाता है। और द फिल्म इज रिमेम्बर्ड फॉर इट्स ग्रिपिंग स्टोरी लाइन, अमिताभ बच्चन ड्यूअल रोल, जीनत अमान की बोल्ड परफॉर्मेंस और अनफॉरगेटेबल म्यूजिक। कल्याण जी आनंद जी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ऐसे ख़ास नगमे हमारे लिए बनाए। तो दोस्तों, ये था जिसका मुझे था इंतज़ार, एक नगमा जो सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एक अंदाज़ है। किशोरदा और लता मंगेशकर की आवाज़ों और जीनत अमान की अदाओं हमेशा याद दिलाती हैं कि हिंदुस्तानी सिनेमा के गीत एक जज्बा भी होते हैं और एक मंजर भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम सुनते हैं हमारा दूसरा नगमा। विल ट्राई एंड प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग एंड होप यू आर गोइंग टू लाइक इट। सो ये सॉन्ग मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा।

That was indeed marvelous. कर्ज कर्ज फिल्म 1980 में आई थी. सुभाष घई ने डायरेक्ट की थी. ऋषि कपूर मोंटी के रोल में, टीना मुनीम और सिमी गारेवाल, राज किरण और प्राण ने एक्टिंग निभाई. लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की संगीत में, आनंद बख्शी ने बोल लिखे. मुक्ता आर्ट्स के तले ये फिल्म थी. इट वॉज़ अ री इंकारनेशन फिल्म. री इंकारनेशन पर कहा जाता है कि हिंदुस्तान में री इंकारनेशन की जितनी सारी फिल्में हैं वो ज़्यादातर कामयाब रही है. मोंटी एक पॉपुलर सिंगर है, लेकिन ही डिस्कवर्स कि ही इज़ द रीबर्थ ऑफ रवि, अ मैन मर्डर्ड बाय हिज वाइफ कामिनी, जिसका रोल निभाया था सिमी कारेवाल ने. क्यों? क्योंकि वो पैसे की लालच में मुब्तला थी. द फिल्म ब्लेंड सस्पेंस, रोमांस एंड म्यूजिक एंड ऋषि कपूर्स फ्लैम्बॉयंट परफॉर्मेंस, मेकिंग मोंटी अनफॉरगेटेबल. है ना, किशोरदा और आपके कोरस में आपका साथ दिया. एनर्जेटिक और फ्लैम्बॉयंसी, डिस्को स्टाइल सेलिब्रेशंस, सब कुछ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी में. तो नमस्ते, हेलो आदाब में दोस्तों. 1980 की फिल्म से हमने गाना सुना ओम शांति ओम, जिसको रीमेक भी किया था. शाहरुख खान ने 2007 में दीपिका पादुकोण को लॉन्च किया था. और किशोर कुमार की आवाज़, ऋषि कपूर का डांस, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सुर, ये गीत एक दावत है, एक जज्बा है, एक धमाका है. लेंगे एक छोटा सा ब्रेक.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद राष्ट्रपति आज से ओडिशा के दो दिन के दौरे पर रहेंगे। वे रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में भी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तीन दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। वे पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन में छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस अधोरी घाट ओनरीहार की वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चार राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों के बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। मिजोरम में 8,75,000 मतदाताओं का 95% से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है। राज्य की संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी एंथेल रोथांगपुई ने बताया कि राज्य में कल तक 8,35,000 से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के 11 जिलों में 100% डिजिटलीकरण हो गया है। इस बीच राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुरोध पर आयोग ने मिजोरम के लिए मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि को पहले की 5 जुलाई से संशोधित करके 4 जुलाई कर दिया है। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि भी 4 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हुए गलत तरीके से दिखाया गया है। वीडियो में दावा किया गया है कि 22,000 रुपए की एकमुश्त जमा राशि से प्रतिदिन 80,000 रुपए तक का रिटर्न मिल सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा बनाया गया है। भारत का LNG टैंकर दिशा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने के बाद आज सुबह गुजरात के दाहिज बंदरगाह पर पहुंच गया। यह कतर के रस लाफान टर्मिनल से 62,370 मीट्रिक टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG लेकर आया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। भारत ने इस समझौते को मौजूदा हालात के विपरीत बताते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है वो सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकता। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ऑलराइट गाइस, तो आपने सुना ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। एक बार आपको फिर से याद दिला दें, आपने अपने रेडियो सेट्स पर ट्यून किया है हमारा एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है नमस्ते लो आदाब, और मेरा नाम है रेडियो मैन। जी हाँ, नमक हराम से लेकर नमक हलाल तक का जो सफ़र रहा है दो गानों के दरमियान, मैं शायर बदनाम किशोरदा का गाना आपने सुना शुरुआती दौर में, फिर उसके बाद आशा भोसले का एक बहुत ही फ्लैम्बॉयंसी डिस्कोथेक वाला नंबर जवाने जाने मन, ये दोनों नगमे आप तक पहुंचा रहे हैं हम यहाँ पर नमस्ते लो आदाब में। हम पहुंच रहे हैं रेडियो की तरंगों के संग जो कि है 101.9 से। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम रुख करते हैं 1970s के दौर को थोड़ा पीछे छोड़ते हुए, और हम आते हैं 80s के दौर में, स्पेशली जहाँ पर ये जो लखनऊ की तहजीब थी, लखनऊ का कल्चर था, उसको लेकर मुजफ्फर अली ने एक ख़ास फिल्म बनाई थी। और इस फिल्म में दो अहम चीज़ें हुई, एक तो रेखा को फिल्म फेयर अवार्ड, फिर नेशनल अवार्ड मिला, फिर साथ ही साथ आशा भोसले की आवाज़ इतनी दिलकश, इतनी दिलचस्प भी, आई जस्ट कांट टेल यू। सो टेक अ लिसन टू दिस वन, आई एम श्योर दैट यू विल लाइक इट।

This was absolutely a gem of a song that you listened to. मुजफ्फर अली ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया. वो खुद एक आर्टिस्ट है. एक आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव जो होता है ना, दैट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस. एंड दिस फिल्म इज़ नॉट जस्ट हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, बट दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू एड वैल्यू टू हाउ एन आर्टिस्ट लुक एट द पिक्चर, एंड स्पेशली ट्राइंग टू प्रोजेक्ट दी गोल्डन एरा ऑफ Hindustani films. So after that song, it's time for us to take a quick break. So let's take a quick break. It's 12:35 in our studio clock, and post that we'll be able to rope in some more songs. Stay tuned and stay alive. You have tuned to this wonderful station, Akashvani Hyderabad, on FM 101.9 megahertz.

ऑलराइट, तो आपने ये गाना सुना कुर्बानी फिल्म से, मनहर उदास उमूमन जो है वो गज़लों में ज़्यादा आपको देखने को नज़र आते हैं, लेकिन प्लेबैक सिंगिंग एक ऐसी सिंगिंग है जहाँ पर पॉपुलर म्यूज़िक होता है, इसी वजह से मनहर उदास की जो आवाज़ है शायद इस फिल्म में गज़ल की तरह ही देखने को मिलती है। कुर्बानी एक बहुत ही शानदार सी फिल्म रही है, फिरोज़ खान का किरदार एक बहुत अहम किरदार माना जाता है, एंड देर आर ऑल्सो रिपोर्ट सेइंग दैट ही जस्ट वॉन्टेड टू हैव अ स्मैश ऑफ दी मर्सिडीज़ कार। मर्सिडीज़ कार उस ज़माने में अगर 20 लाख की आती थी तो 20 लाख की कार को उन्होंने चकनाचूर कर दिया था, बिकॉज ही वॉन्टेड टू हैव द रियलिस्टिक शॉट्स बींग शोन इन हिज फिल्म। दैट वॉज द डेडिकेशन ऑफ द डायरेक्टर्स बैक देन, एंड दैट्स वाई इट वॉज अ सुपर डुपर हिट फिल्म ऑफ इट्स टाइम। यू आर लिसनिंग टू सम अमेजिंग सॉन्ग्स हियर इन दिस एडिशन ऑफ नमस्ते हेलो आदाब। मेरा नाम है रेडियो मैन, और शो तो आपको पता है 101.9 के माध्यम से आप तक पहुँच रहा है। तो हम 90s और 80s के दौर की कुछ खूबसूरत चुनिंदा नगमे आप तक पहुँचा रहे हैं। हम चाहते हैं कि 2000 की तरफ भी हम रुख करें, एंड देर इज़ वन सॉन्ग विच एक्चुअली हैज़ दिस बैंटरिंग ऑफ द जेंडर्स, एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ ऑस्ट्रेलियन फिल्म शॉट एंटायरली इन ऑस्ट्रेलिया एंड विच वॉज ऑल्सो क्वाइट गुड। सो लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग, कमिंग अप योर वे इज़ हम तुम।

साधना सरगम और मुर्तजा और कदीर की आवाज़ों में आपने साथिया फिल्म 2002 से ये फिल्म का गीत सुना। शाद अली ने जिसे डायरेक्ट किया था, मल्टी स्टारर फिल्म थी। विवेक ओबराय, रानी मुखर्जी, तनुजा और शरद सक्सेना। साथिया एक्सप्लोर्स द जर्नी ऑफ लव बियॉन्ड द वेडिंग, द जॉयज, द स्ट्रगल्स एंड ऑफ कोर्स आप देखने को मिलेगी बहुत सारी रियलिटी जो कि शादीशुदा जिंदगी में नज़र आती है ना। खूबसूरत सा नगमा यार, रहमान की मौसिकी, साधना सरगम की मखमली आवाज़ और गुलजार के बोल काफ़ी मेटाफॉर्स हैं, जैसे नेचर है, मूनलाइट है, ब्रीज है, साइलेंस है, सब कुछ। तो नमस्ते लो, आदाब। का सफ़र ऑलमोस्ट इख्तिताम तक पहुंच रहा है, तो हम जल्दी से चाहते हैं कि आपके लिए एक और गाना, पार्वती खान का एक गाना आप तक पहुंचाए।

ऑलराइट, तो वही धुन हमने एक बार दोबारा आपके लिए प्रस्तुत की, और मुझे उम्मीद है कि पार्वती खान का यह जिमी जिमी वाला गाना आपको ज़रूर पसंद आया होगा। एक बज चुका है, तो हम रुख करते हैं हमारे दूसरे शो की जानिब, जो कि है आपका अपना हेलो रेनबो। जी हाँ, तो हेलो रेनबो में आप

0: से रहेगी हमारी गुफ्तगू, और हम चाहते हैं कि आप अपने मैसेजेस के द्वारा, व्हाट्सएप के मैसेजेस के द्वारा हमसे रब्त कायम करें। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे। हेलो रेनबो।
1: हेलो,

0: ऑल राइट साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है हेलो रेनबो। जी हाँ, इट्स 1 PM एंड दिस इज योर आर वेयर इन यू कैन कॉल अस एंड ऑल्सो सेंड योर मैसेजेस टू अस थ्रू द व्हाट्सएप नंबर। तो आज है 19 जून और वी आर सेलिब्रेटिंग अवेयरनेस, स्पिरिचुअलिटी, स्पोर्ट्स और कल्चरल कॉल। जी हाँ, अपने जितने ख्यालात हैं, थॉट्स हैं, वो आप हमें बता सकते हैं हमारे मैसेज के द्वारा। सो टुडे यू आर द स्टार, है ना कमाल की बात। तो इस तकरीबन 55-50 मिनट में आप हमारे खुद के स्टार रहेंगे, तो आप जल्दी से हमें मैसेज कीजिए और बताइए। आज का जो दिन है वो एक ख़ास भी है, क्योंकि आज जो है वो दरअसल है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। Today is also a solemn reminder of the struggles faced by the survivors of the conflict related to violence. So music has always been a voice for justice. From protest songs to soulful ghazals, FM Rainbow dedicates this segment to resilience and hope. So let's play a track that speaks of strength, because ये बहुत ही ज़रूरी है। एक फिल्म आई है जो Netflix पर available है, आप भी देख सकते हैं। फिल्म का नाम थोड़ा सा गाली वाला लगता है, लेकिन है नहीं, एक मिसोजिनिस्ट पर बनी ये ख़ास फिल्म है। तो आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच माँ बहन, जो कि फिल्म का नाम है। माधुरी दीक्षित, दीप्ति के बेहतरीन किरदार हैं, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि रवि किशन की भी उसमें अहम भूमिका है। तो उसी फिल्म से हम ये गाना लेते हैं और आपके लिए सुनाते हैं। तो मिलकर सुनेंगे माँ बहन से कारी कारी।
1: जब जब वन में आग लगी है हमने आंखें सेकी है, जब जब वन में नची मोरनी आंखें भर के देखी है।

0: ऑलराइट तो यूपी बिहार वाली जबान भोजपुरी स्टाइल के गीत, तो ये खास गाना आपने सुना, काफ़ी दिलचस्प सा गाना है और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कारी कारी जो गाना है वो फिल्म है माँ बहन। माँ बहन जो कोलोकियल जबान में स्लैंग के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसी को लेकर ये फिल्म बनाई गई। और ऐसे सिंगर जो है नील कमल सिंह ने काफ़ी अच्छे अंदाज से गाया। आकाशदीप सेन गुप्ता ने इसकी मौसीकी रची और लिरिक्स हैं शुभम शिरूले के, और बहुत ही बढ़िया म्यूजिकल अरेंजमेंट था, गिटार थे, बुलबुल तरंग है और सब कुछ है। तो ये फिल्म दरअसल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तृप्ति दिमरी हैं, माधुरी दीक्षित हैं, रवि किशन है, धर्मा दुर्गा भी हैं जो कि पहली बार नजर आई हैं। तो फिल्म की स्टोरी बहुत ही साफ सुथरी है। माधुरी की जो दो बेटियां हैं, एक की शादी हो चुकी है और जहां शादी हुई है वहां पर उनकी छोटी बहन भी रहती है, लेकिन जब एक ऐसा कॉल आता है रात में उस पर ये दोनों बहनें वापस घर में आ जाती हैं। उसके बाद जो सोसाइटी में होता है अकेली महिला का रहना दो हाल कर देते हैं, बुरा हाल हो जाता है, वही कुछ इस फिल्म में देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ अ ग्रेट यू नो फिल्म ऑन दी सटायर एंड ऑल्सो अ डार्क कॉमेडी इन सम सेंस अबाउट दी मिडल एजड वुमेन लिविंग अलोन इन द सोसाइटी वेयर हाउ थिंग्स गो रॉन्ग, है ना, बड़ी दिक्कत वाली बात। तो नमस्ते, हेलो, आदाब। में आपने ये गाना सुना, नई फिल्म है माँ बहन का नगमा है कारी कारी जो है, तो अभी से दिलों में जगह बना रहा है। नील कमल की जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है और ये गीत एक नया जज्बा है। माधुरी और तृप्ति की अदाएं और उससे भी ख़ास जो है वो है नील कमल की आवाज़। तो फ्यूजन ऑफ मॉडर्न बीट्स और फोक इंस्ट्रूमेंट्स का जो मिश्रण है वो बहुत ही दिलचस्प है। माधुरी का स्क्रीन प्रेजेंस का क्या कहना, तो आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली गो एंड वॉच इट। तो आइए आगे बढ़ते हैं और उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
1: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 జూన్ 25 నుంచి జూలై 24 వరకు గణన దశ. ఈ దశలో బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఇంటింటికి వచ్చి ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ ని ఇస్తారు. ఓటర్ల ఆ ఫామ్ ను పూర్తి చేసి తిరిగి సంబంధిత బిఎల్ఓకు అందజేయాలి. ఆన్లైన్ లో ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలనుకునే వారు voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగిచ్చిన వారి పేర్లు మాత్రమే ముసాయిదా జాబితాలో చేర్చబడతాయి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.
2: నేను ఎం శ్రీనివాస్, డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్, హైదరాబాద్. పిల్లల పరంగా మిస్సింగ్ చిల్డ్రన్స్ కానీ 0 to 18 ఇయర్స్ ఎటువంటి పిల్లలు మీకు కనపడినట్లయితే మీరు

जबी जमा जेनी विद सनी टू अविनाश और मेधा की जोड़ी ने कमाल किया और जावेद अली की आवाज़ काफ़ी दिनों के बाद हमें नज़र आई है और आपको शायद ये गाना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आपने अपने रेडियो सेट्स पर ट्यून किया है हमारा ये ख़ास कार्यक्रम जो कि है FM रेनबो। हेलो रेनबो, जी हाँ। तो जिनी वेट्स सनी टू 2026, ये दरअसल 2020 की सीक्वल है जिनी वेट्स सनी, और यामी गौतम विक्रांत मैसिक का था, लेकिन फिलहाल ये नया एंसेम्बल ऑफ कास्ट है और इसमें पंजाबी वोकल्स हैं, फिर बॉलीवुड का रीअरेंजमेंट है, एक फ्रेश फीलिंग है और इसके पिक्चरस्क्यू जो विजुअल से बहुत ज़्यादा दिलचस्प हैं, कहीं ना कहीं आपको वो एनर्जी, सेलिब्रेशन, वेडिंग पार्टी सब कुछ नज़र आएगा। जप्पी जावा इज़ डिज़ाइंड एज ए क्राउड प्लीजर, अ ट्रैक दैट ब्लेंड्स ट्रेडिशनल पंजाबी वेडिंग फ्लेवर विद मॉडर्न बॉलीवुड डांस बीट्स। डांस बीट्स तो बहुत कम थे, लेकिन एक माने खैज इसके अंदर लिरिक्स हैं। सो इट्स कैची, इजी टू सिंग अलोंग एंड ऑल्सो आइडियल फॉर इट। जी हाँ दोस्तों, नमस्ते, हेलो आदाब के शो के बाद आप हमारे साथ तैयार हैं इस शो में जो कि है हेलो रेनबो। हेलो रेनबो पर आपके मैसेजेस का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो जप्पी जावा एक नगमा जो शादी और ब्याह के मौसम और प्यार का इजहार करने के लिए काफ़ी सूदमंद है, क्योंकि सफ़र है रंगीन, तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। तो हमारा जो अगला नगमा है वो हम आगे बढ़ते हैं और उसे सुनने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि हम आपको नए पुराने नगमे मिलकर, बल्कि मिलाकर कुछ सुनाना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। ये एक और एक नया नगमा आ रहा है आपके लिए और मैं चाहूँगा कि आप इसे गौर से सुनिए, काफ़ी अच्छा नगमा है और ये है तो तुम ही हमारी ओ माई लव। टॉप 40 सॉन्ग्स में अभी भी प्ले कर रहा है, तू या मैं, आदर्श गौरव है, शनाया कपूर है, कुमार सानू और अनुराधा, लेकिन रीविजिटेड, री आई थिंक रीबर्थ ऑफ द सॉन्ग इन सम सेंस। देयर वी गो विद द सॉन्ग।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

यार दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प सा नगमा, जैसे तू पास मेरे, एक नया नगमा है और ये नई फिल्म आई है, थिएटर में फिलहाल चल रही है। मैं वापस आऊँगा 1947 की, जो आपके बाइफरकेशन ऑफ इंडिया है, जहाँ पर मुल्क दो में तकसीम हो गया था। तकसीम मुल्क को लेकर एक नई रोशनी लेकर, नई कैफियत लेकर, एक नया पर्सपेक्टिव लेकर इम्तियाज़ अली ने इस फिल्म को बनाया है। AR रहमान की मौसिकी है। आपने देखा कि कितनी खूबसूरत तरीके से इस गाने को कंपोज किया गया है। इरशाद कामिल के खूबसूरत बोल हैं, तो जैसे तू पास मेरे, जैसे आप पास हमारे। जी हाँ दोस्तों, एक बार आपको फिर से याद दिला दें, आपने अपने रेडियो सर्स पर ट्यून किया है हमारे खास कार्यक्रम, जो कि है हेलो रेनबो, और मैं हूँ आपका रेडियो मैन। तो आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारा दूसरा नगमा, और ये नगमा जो है हमने लिया है ख़ास तौर आपके लिए। तो चलिए, कुछ नए गाने तो हम सुन ही रहे हैं, पुराने गानों की तरफ भी थोड़ा बढ़ते हैं, और ये एक अद्भुत सा गाना उस ज़माने में आपके लिए।

All right, so that was Ding Dong, and friends, let me tell you that our melodies fade into this afternoon. Remember, music is more than sound. अनडाउटली तो दोस्तों, सुरों का ये जो सफ़र है अब दोपहर की रोशनी में आहिस्ता आहिस्ता डल रहा है। हेलो रेनबो के इस घंटे में हमने बातें की, कहानियाँ और नगमे साथ बांट लिए जो हमेशा यादों में जिंदा रहेंगे। अपने दिन को इन सुरों के साथ रोशन रखिए और रेनबो FM 101.9 पर हमेशा साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ हर नगमा एक खुशी का पैगाम लाता है। इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त, आपका अपना रेडियो मैन। तो होगी जल्द आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, एंड अस्ता ला वीस्टा बेबी, अडियोस अमिगोस, बाय बाय।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

बेदारी प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो 25 जून से 24 जुलाई तक जारी रहने वाली वोटर फहरिस्त नजरसानी मुहिम के दौरान पूरी तरह चौकस रहें। उन्होंने कहा कि एजेंट इस बात को यकीनी बनाए कि अहलियत के फॉर्म हर वोटर तक पहुँचे, खुसूसन इन इल्ज़ामात के पेश नज़र के मकथल में बड़ी तादाद में वोट गैरकानूनी तौर पर हजफ करने की कोशिशें की जा रही हैं। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव ने हैदराबाद के नागोल में इलेक्शन कमीशन के खसूसी जाम नज़रसानी अमल SIR के सिलसिले में एक वर्कशॉप से खिताब किया। उन्होंने वादे किया कि SIR वोटर फहरिस्तों को साफ और दुरुस्त बनाने के लिए एक आईनी अमल है, ना कि बीजेपी का कोई इकदाम। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद अब तक ये अमल 11 मरतबा अंजाम दिया जा चुका है। रामचंद्र राव ने कांग्रेस, BRS और MIM जैसी अपोजिशन जमातों की जानिब से ये दावा किए जाने की मजम्मत की कि मुस्लिम वोटरों को निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सिर्फ फर्जी दोहरे इंदराज वाले फौतशुदा या गैर कानूनी तारिकिन वतन के वोट ही हजफ किए जाएंगे। उन्होंने पार्टी कारकुनों से अपील की कि वो घर घर जाकर मुस्तहिक वोटरों की मदद करें और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का मुअस्सर जवाब दें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने कामयाब दो मुल्की दौरे का अख्तिताम कर लिया है। फ्रांस के दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में मुनाक़िदा G7 सरबराही इजलास में शिरकत की। इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिश मर्स, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टामर और मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान समेत कई आलमी रहनुमाओं से दो तरफा मुलाकातें की। इससे कबल वज़ीर आज़म मोदी और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के शहर नाइस में भारत इनोवेट्स प्रोग्राम का मुश्तरका इफ्तिताह किया। ये खबरें आप आकाशवाणी हैदराबाद से सुन रहे हैं। रियासती वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत अनाज ज़खीरा करने के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए 20 बड़े धान पैदा करने वाले अजला में जदीद अनाज ज़खीरा करने के मराकज़ क़ायम करने पर गौर कर रही है। ज़खीरा और नकल अमल के माहरीन के साथ जायज़ इजलास के दौरान उन्होंने बताया कि इब्तदाई मरहले में 50,000 मेट्रिक टन गुंजाइश के हामिल मराकज़ के नेटवर्क की तामीर का मनसूबा है। उन्होंने वाज़े किया कि ये मराकस मौजूदा ख़रीदारी सेंटर्स जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जगह नहीं लेंगे, बल्कि उनकी तकमील करेंगे। वजारत दिफा ने मूसा नदी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है, जिससे मूसा नदी की बहाली के मनसूबे को एक बड़ी पेशरफ्त हासिल हुई है। मरकजी हुकूमत ने तोपखाना मरकज गोलकुंडा के तहत आने वाली 83 एकड़ अराजी, जिसकी मालियत 2533 करोड़ रुपए है, पर वाक़ बापू घाट को गांधी सरोवर के तौर पर तरक्की देने की इजाज़त दे दी है। इस मंजूरी के बाद तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और फौज का शुक्रिया अदा किया। हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया बैनुल अक़वामी योम योगा के मौके पर मुल्क भर में योगा सेशंस का इनेकाद करेगी। वजारत दिफा के मुताबिक ये प्रोग्राम शुमाल में लेह के बुलंद पहाड़ियों से लेकर जुनूब में कानिकोबार के साहिलों तक और मशरक़ में तवांग से मगरब में मुक़दस शहर द्वारका तक मुनक़द किए जाएंगे। वजारत ने बताया कि फ़ज़ाइया के अहलकारों और उनके ख़ानदानों के अलावा स्कूली तलबा और NCC कैडेट्स भी मुख्तलिफ फ़ज़ाइया स्टेशनों पर मुनक़द होने वाले योगा प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। मेदक के ज़िला कलेक्टर ने ऐलान किया कि 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक मुनक़द होने वाले नीट UG 2026 इम्तिहान के पुरमन, शफाफ और हमवार इनेकाद के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। ज़िले के वाहिद इम्तिहानी मरकज़ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेदक में 481 उम्मीदवार इम्तिहान देंगे। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने वादे किया कि कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तालीमी इदारों की इंतजामिया के साथ मुनक़िदा ट्रैफिक बेदारी इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने स्कूलों पर जोर दिया कि नाबालिग तलबा की ड्राइविंग के खिलाफ डीमेरिट पॉइंट निज़ाम नाफिज किया जाए और तलबा की नकलो हमल पर कड़ी नज़र रखी जाए।
उन्होंने हालिया शराब नोशी के बाद ड्राइविंग

के वाकयात के तनाजुर में स्कूलों को बस ड्राइवरों की निगरानी करने की भी हिदायत दी। भद्राचलम कोतागुड़म आईटीडीए के प्रोजेक्ट ऑफिसर और पिनापाका हल्का इंतखाब के इलेक्शन ऑफिसर पी राहुल ने हिदायत दी कि बूथ लेवल अफसरान वो सुपरवाइजर्स 25 जून से अश्वापुरम मंडल में शुरू होने वाले वोटर रजिस्ट्रेशन अमल के लिए खानदानों की तफसीलात दुरुस्त तरीके से दर्ज करें। एक तरबियती इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने मुतालिका एहलकारों को हिदायत दी कि वह अहल वोटर्स से मुलाकात करें, मरदमशुमारी फॉर्म तकसीम करें और 24 जुलाई तक उन्हें वापस जमा करें। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी ने महबूब नगर में वार्तालाप के उनवान से एक मीडिया वर्कशॉप का इनेकाद किया। इस वर्कशॉप का मकसद देही और ज़िले सतह के सहाफ़ियों को गुज़िश्ता 12 बरसों के दौरान मरकजी हुकूमत की फलाही स्कीमों और तरक्याती इकदाम से आगाह करना था। पीआईबी की मीडिया और कम्युनिकेशन अफसर वी गायत्री ने आवाम तक दुरुस्त और मुस्तनद मालूमात पहुँचाने में मीडिया के अहम किरदार को उजागर किया। नामपली अदालत ने संध्या थिएटर वाक़े के सिलसिले में अदाकार अल्लू अर्जुन को समन जारी करते हुए पीर के रोज़ अदालत में हाजिर होने की हिदायत दी है। चिकरपल्ली पुलिस ने इस मुकदमे में उन्हें 11वें मुलजिम के तौर पर नामजद किया है। आखिर में बुलेटिन की सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। तेलंगाना के गवर्नर और वजीर आला ने एलबी स्टेडियम में यंग इंडिया एजुकेशन किट पहल का आगाज़ किया। किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत हमेशा तेलंगाना की तरक्की की ख्वाहां रही है, इसीलिए हैदराबाद को मेगा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए मुंतखब किया गया। तेलंगाना में धान की खरीदारी के लिए हुकूमत ने मजीद 20 अजला में मराकस में इजाफे का फैसला किया है। और वजारत दिफा ने मूसा नदी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बाजाबता मंजूरी दे दी है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने राजनाथ सिंह का शुक्रिया अदा किया। आकाशवाणी हैदराबाद से इलाकाई खबरें खत्म हुईं।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM रेनबो 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम नैरंग।

0: दोस्तों, अब आइए सुनते हैं डॉक्टर माइक पर सिलसिले तहत खून की अहमियत उनवान पर की गई बातचीत डॉक्टर उस्मा बतूल से। शरीके गुफ्तगू है रोहिना फातिमा, आइए सुने।
1: डॉक्टर माइक प्रोग्राम के तहत आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर उज्मा बतूल तशरीफ़ लाई हैं और आज का मौजू गुफ्तगू है इंसानी जिस्म में खून की अहमियत वो अमराज। डॉक्टर उज्मा बतूल, आपका खैर मकदम है, आदाब।
2: आदाब।
1: आज हम जानना चाहेंगे कि इंसानी जिस्म में खून की क्या अहमियत है।
2: खून एक मखसूस जिस्मानी सियाल मादा है जो आपके
1: जी
2: पूरे जिस्म में मुसलसल बहता रहता है। ये आपके जिस्म को फ़ाल रखने के लिए बहुत सारे फंक्शंस करता है, जैसे कि
1: जी
2: आपके पूरे जिस्म में ऑक्सीजन ले जाना,
1: हम्म
2: फुजलात के नाकारा मादों को ले जाना
1: जी
2: और ग़िज़ाई अज्ज़ा ले जाना वगैरह। खून एक ज़रूरी क़ुव्वत हयात है,
1: जी
2: यूँ समझ ले आपका खून आपके सेहत का बारोमीटर है। गैर मामूली खून के टेस्ट के नतायज संगीन बीमारियों की पहली अलामत हो सकती है।
1: बेशक जी
2: जिस तरह हमारे जिंदा रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए हमारे दिल, गुर्दे, दिमाग का सेहतमंद होना ज़रूरी है,
1: जी
2: उसी तरह खून के खलियात का सही मकदार में और सही फंक्शन करना ज़रूरी है।
1: जी
2: अगर
1: जी
2: आप देखेंगे तो एक सेहतमंद मर्द में 14 से 18 ग्राम हीमोग्लोबिन मौजूद रहता है
1: जी
2: और एक सेहतमंद औरत में 12
1: जी
2: से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन मौजूद रहता है,
1: जी इसी तरह बच्चों में
2: बच्चों में 10 से 11।
1: 10 से 11। जी डॉक्टर उज्मा, खून के अज्जा कौन कौन से हैं?
2: खून में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 60% प्लाज्मा है
1: जी
2: और 40% खून के खलियात हैं। प्लाज्मा
1: जी
2: बुनियादी तौर पर पानी है जिसमें आप एंटीबॉडीज, हॉर्मोन्स,
1: जी
2: प्रोटीन्स, तरह तरह के क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये सब पाए जाते हैं।
1: बेशक
2: और
1: जी
2: खलियात जो 40% हमारे खून का हिस्सा बनाते, वो वसी पैमाने पर तीन

0: के होते हैं।
1: जी अच्छा
0: रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज, जिसको लाल खून के खलियात भी कहते हैं,
1: अच्छा जी जी
0: व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसीज, जिसको सफेद खून के खलियात भी कह सकते हैं, और तीसरे प्लेटलेट्स।
1: जी लाल खून यानी कि आरबीसी का आपने जिक्र किया, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए।
0: जी, रेड ब्लड सेल्स को आरबीसी कहते हैं। इनमें एक प्रोटीन हीमोग्लोबिन मौजूद रहता है, जिसकी
1: जी
0: वजह
1: जी
0: से हमारा खून लाल रंग का नजर आता है।
1: जी हाँ जी हाँ
0: हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन है कि वो ऑक्सीजन आपके फेफड़ों से लेकर आपके तमाम ऑर्गन्स को इक्वल अमाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है।
1: जी
0: अगर आप देखेंगे तो आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन है, मतलब आपके खून में एक रेड ब्लड सेल्स 120 दिन तक रहता है,
1: अच्छा
0: उसके बाद नए रेड ब्लड सेल्स से तब्दील हो जाता है।

0: ही
1: अच्छा
0: उसके बाद नए रेड ब्लड सेल से तब्दील हो जाता है।
1: जी, इसी तरह आप सफ़ेद खून के खलियात के बारे में ज़िक्र कीजिए।
0: सफेद खून के खलियात आपके जिस्म में एक बहुत अहम किरदार करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स।
1: जी अच्छा
0: वो तरह तरह के जरासीम यानी कि बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंगाई से लड़ने में और उनको ख़त्म करने में एक बहुत अहम किरदार प्ले करते हैं, जिसकी वजह से आप तरह तरह के इन्फेक्शन से महफूज रहते हैं।
1: WBC से
0: जी,
1: जी, प्लेटलेट्स के बारे में बतलाइए।
0: जब भी आपको मार लगी या फिर आपकी कोई सर्जरी हुई या फिर खून की रग कटने से खून बहता है, तो प्लेटलेट्स खून जमने के अवामिल के साथ मिलकर खून का लोथड़ा बनाते हैं, जिसकी
1: जी
0: वजह से आपका खून ना ज़्यादा देर तक बहता है ना ज़्यादा मिकदार में बहता है।
1: अच्छा, खून के कितने ग्रुप होते हैं और उसके अकसाम के बारे में जानना चाहेंगे।
0: जी, अक्सर जो पाए जाने वाले ब्लड ग्रुप से वो चार किस्म के हैं,
1: जी जी
0: ए बी ए बी ओ।
1: जी जी
0: अगर आपके रेड ब्लड सेल्स पर ए एंटीजन मौजूद है और उसके साथ आरएच एंटीजन भी मौजूद है, तो आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा।
1: अच्छा
0: और अगर आपके रेड ब्लड सेल्स पर ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों मौजूद है, उसके साथ साथ आरएच एंटीजन भी मौजूद है, तो आपका ब्लड ग्रुप ए भी होगा।
1: अच्छा
0: और अगर
1: जी
0: आपके रेड ब्लड सेल्स पर ए एंटीजन भी नहीं है और बी एंटीजन भी नहीं है, तो आपका ब्लड ग्रुप ओ होगा।
1: जी अच्छा, ये खून के अतीय के बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिए।
0: जी, जो ओ ब्लड ग्रुप के लोग होते हैं वो अपना खून किसी को भी दे सकते हैं, तो इनको यूनिवर्सल डोनार भी कहते हैं। अगर
1: जी
0: स्पेसिफिकली देखेंगे तो ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनार से जाना जाता है,
1: जी जी जी
0: और ए बी ब्लड ग्रुप के इंसान किसी से भी खून ले सकते हैं, तो
1: अच्छा
0: इनको यूनिवर्सल रिसिपिएंट भी कहा जाता है।
1: जी अच्छा जी जी जी
0: एक सेहतमंद इंसान अपना खून अत्या जब डोनेशन करें
1: जी जी अतिया करता है जी। हाँ
0: जी, तो मिनिमम 350 से 500 ml एक सेटिंग में
1: अच्छा
0: ब्लड डोनेशन कर सकते
1: जी, तो
0: हैं।
1: उसकी कुछ मकदार है समझिए
0: जी,
1: जी। अच्छा
0: इतना ब्लड देने से 1 से 1.5 ग्राम हीमोग्लोबिन आपके जिस्म में कम होता है।
1: अच्छा जी जी जी
0: 8 हफ्ते के बाद आप फिर से डोनेट कर सकते हैं।
1: जी खून से मुंसलिक बीमारियों के बारे में बताइए।
0: खून से मुंसलिक बीमारियां तो बहुत सारी है, लेकिन जो आज हम डिस्कस करेंगे
1: जी
0: वो
1: हाँ
0: चार तरह के हैं। सबसे पहले
1: जी
0: एनीमिया, जिसको खून की कमी भी कह सकते हैं।
1: जी
0: दूसरा है ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, खून जमने के अमराज।
1: जी
0: तीसरा
1: जी
0: है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, खून बहने के अमराज। और
1: जी
0: चौथा है लुकीमिया।
1: जी खून की कमी के बारे में बताइए।
0: जी, खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। ये जब होती है तब आपके जिस्म में सही मिकदार में रेड ब्लड सेल्स या फिर हीमोग्लोबिन मौजूद ना हो, या फिर इसकी सतह कम हो, या फिर सतह मौजूद हो पर वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा हो।
1: जी अच्छा
0: हालिया तहकीक के मुताबिक 15 से 50 साल की उम्र में एनीमिया 30% लोगों को मुतासिर करता है
1: जी
0: औरतों में, और मर्दों में 25%।
1: अच्छा
0: और अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स में आप देखेंगे तो एनीमिया 35% फीमेल्स में पाया जाता है, और 5 साल से कम बच्चों में 39% एनीमिया मौजूद है।
1: जी, खून के मुंजमिद होने की वजूहत क्या हो सकती हैं।
0: ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स को खून जमने के अमराज कहते हैं। इस तरह
1: अच्छा
0: के बीमारियों में आपके जिस्म में जगह जगह पर खून के लोथड़े बन जाते हैं।
1: जी अच्छा
0: इस तरह की बीमारियों में एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, प्रोटीन सी डेफिशिएंसी, प्रोटीन एस डेफिशिएंसी, एंटी थ्रोम्बिन डेफिशिएंसी को शामिल किया जाता है।
1: अच्छा डॉक्टर उज्मा बतूल, खून के बहने के बारे में कुछ बताइए।
0: जी, खून बहने के बीमारियों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स कहते हैं। इस तरह के बीमारियों में
1: जी
0: आपका
1: जी
0: खून जमता नहीं है।
1: अच्छा
0: इसमें वॉन विलिब्रेन डिजीज,
1: जी
0: हीमोफीलिया,
1: जी
0: वाइटामिन के डेफिशिएंसी। वाइटामिन के डेफिशिएंसी आपके खून जमने के अवामिल तैयार करने में आपके लिवर की मदद करता है।
1: अच्छा
0: सो अगर आपके जिस्म में वाइटामिन के की डेफिशिएंसी हो,
1: जी,
0: तो आपका खून ज़्यादा मिकदार में या फिर ज़्यादा देर तक बहता है, और ये एक
1: अच्छा
0: तरह का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है।
1: डॉक्टर उज्मा बतुल, खून के कैंसर के बारे में बताइए, क्योंकि आज ये बहुत ज़्यादा आम होते जा रहा है ये मर्ज़।
0: खून के कैंसर को लुकीमिया कहते हैं।
1: जी
0: अगर ये सही वक्त पर ना पता चले तो जानलेवा।

0: प्रभावी साबित हो सकता है। पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो खून का कैंसर अमोंग द मोस्ट कॉमन कैंसर्स 10th पोजीशन पे
1: जी हाँ,
0: अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सर्वे आया है।
1: खून की कमी यानी एनीमिया और इसकी वजूहात के बारे में जानना चाहेंगे।
0: जी, अगर आप देखेंगे तो खून की कमी के बहुत सी शक्लें हैं और हर शक्ल की अपनी अपनी वजह होती है।
1: जी अच्छा,
0: ये या तो तवील मुद्दती हो सकती है या फिर खलील मुद्दती हो सकती है।
1: जी
0: वसी पैमाने पर खून की कमी यानी एनीमिया के 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला है माइक्रोसाइटिक एनीमिया।
1: जी
0: इसमें आपके रेड ब्लड सेल्स का साइज नॉर्मल से कम होता है। इसके 2 वजूहात हैं। सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी।
1: जी
0: अगर आपकी ग़िज़ा में सही मकदार में आयरन मौजूद ना हो तो कुछ अरसे तक इसी तरह की ग़िज़ा खाने की वजह से आपको माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है।
1: अच्छा, खून की कमी की क्या अलामत जाहिर होती हैं इंसानी जिस्म में?
0: दूसरी तरह का माइक्रोसाइटिक एनीमिया है थैलेसीमिया। ये एक मौरूसी बीमारी है।
1: अच्छा
0: ये 2 तरह के होते हैं, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। दूसरी तरह का एनीमिया है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। इसमें आपके रेड ब्लड सेल्स ना बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं।
1: अच्छा जी,
0: जी, इसके वजूहात है एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक डिजीजेस, जैसे कि कोई बीमारी जो तवील अरसे से चली आ रही हो, जैसे कि गुर्दे की बीमारी, HIV, कैंसर, ये सारी चीज़ों से आपको खून की कमी हो सकती है
1: जी
0: जो नॉर्मोसाइटिक एनीमिया के तौर पर जाहिर होती है। दूसरी वजह हो सकती है एप्लास्टिक एनीमिया,
1: जी
0: जिसमें आपके जो हड्डी का गुद है जिसको बोन मारो कहते हैं
1: जी
0: वो खून के खलियात बनाना बंद कर देता है।
1: अच्छा
0: इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, जैसा कि इन्फेक्शंस, पार्वोवायरस, साइटोमेगलोवायरस, या फिर कैंसर में लिया गया ट्रीटमेंट जैसा कि रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इसकी वजह
1: जी
0: से सेल्स नहीं बनते और आपके जिसमें खून की कमी हो सकती है। तीसरा है, अगर आपके जिसमें से खून मुसलसल खून बह रहा हो, जैसा कि पेट में जो अल्सर्स होते हैं ना,
1: जी हाँ
0: उससे अगर कंटिन्यू खून बहता रहा तो आपको एनीमिया होता और ये
1: अच्छा
0: एक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया की वजह है।
1: जी
0: और तीसरी तरीके का एनीमिया है मैक्रोसाइटिक एनीमिया।
1: जी
0: इसमें आपके रेड ब्लड सेल्स ज़रूरत से ज़्यादा बड़े साइज में डेवलप होते हैं।
1: अच्छा
0: ये क्यों
1: जी
0: होता है बोले तो आपके जिसमें विटामिन B9 और B12 की डेफिशिएंसी से होता है।
1: जी अच्छा, विटामिन B12 किस मतलब कि हम उसको रिकवर करने के लिए क्या खाना चाहिए?
0: विटामिन B12 आपको एनिमल प्रोडक्ट्स यानी कि गोश्त, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि बटर, मिल्क, पनीर और
1: अच्छा
0: हरे पत्तियों की सब्जियों से ज़्यादा मकदार में मिलता है।
1: जी अच्छा, डॉक्टर उज्मा बतुल, खून की कमी की क्या अलामत जाहिर होती हैं इस बारे में बताइए।
0: अगर आपका हीमोग्लोबिन कुछ ज़्यादा मकदार में कम ना हो तो कोई अलामत जाहिर नहीं होते,
1: अच्छा
0: लेकिन अगर बीमारी शदीद हो तो अलामत जैसे कि थकावट महसूस होना, कमज़ोरी महसूस होना, दम
1: जी
0: चढ़ना, सांस फूलना, हाथ पैर हमेशा ठंडे रहना, चक्कर आना, सीने में दर्द होना,
1: जी
0: पैल्पिटेशंस यानी कि बेतरतीबी से दिल का धड़कना, पाइका यानी कि ऐसे चीज़ खाना जिसमें कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू ना हो, जैसे कि बर्फ़,
1: अच्छा
0: पेंसिल,
1: जी
0: चॉक पीस। और अगर सिवियर हो जाए एनीमिया तो आपको रोज़मर्रा के काम जैसे कि खाना, ये सारे काम करना भी मुश्किल नज़र
1: रोज
0: आ।
1: खून के कैंसर के बारे में अभी आपने जिक्र किया, उसके अकसाम के बारे में बताइए।
0: जी, खून के कैंसर को लुकीमिया कहते हैं।
1: जी
0: ये 4 किस्म का होता है, ALL एक्यूट लिम्फोसाइटिक लुकीमिया,
1: जी
0: CLL क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक लुकीमिया,
1: जी
0: AML एक्यूट माइलॉइड लुकीमिया, CML क्रॉनिक माइलॉइड लुकीमिया।
1: जी
0: एक्यूट लिम्फोसाइटिक लुकीमिया ये बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है।
1: अच्छा
0: एक्यूट माइलॉइड लुकीमिया ये शदीद किस्म का लुकीमिया है, इसके सिम्टम्स बहुत जल्दी पता चलते हैं। क्रॉनिक लिम्फोइड लुकीमिया ये जवानी की उम्र में बहुत ज़्यादा पाया जाता है,
1: जी
0: इसकी अलामत कई साल तक जाहिर नहीं होते।
1: अच्छा
0: क्रॉनिक माइलॉइड लुकीमिया ये बुढ़ापे की उम्र में बहुत ज़्यादा पाया जाता है।
1: जी खून के कैंसर की अलामत क्या होंगी?
0: आम अलामत जो खून के कैंसर के पेशेंट में नज़र आते हैं वो है बार बार बुखार आना, रातों में पसीने बहना, यानी कि एक सेहतमंद इंसान को अगर आप देखेंगे तो 3 से 5 दिन तक बुखार रहता और फिर दवाई लेने के बाद वो कम हो जाता, लेकिन अगर एक
1: अच्छा
0: खून के कैंसर के पेशेंट को आप देखेंगे तो उनको एक

0: हफ्ता 2 हफ्ता कंटिन्यूस और बार बार बुखार से मुतासिर होते हैं।
1: अच्छा
0: मुसलसल थकावट और कमजोरी का महसूस होना, वजन कम होते जाना,
1: जी
0: लिम्फ नोड्स का सूज जाना, उसी तरह से जिगर या तिल्ली का बढ़ जाना, रातों में पसीनों का बहना,
1: जी
0: हड्डियों में दर्द होना और जिल्द के नीचे खून का जम जाना, नाक से खून का बहना,
1: जी
0: ये सारी अलामत एक ल्यूकीमिया के पेशेंट्स में वक्तन बा वक्तन जाहिर होती है।
1: अच्छा, इसकी तशखीस कैसे की जाए?
0: ल्यूकीमिया की तशखीस के लिए आप एक सिंपल कंप्लीट ब्लड पिक्चर यानी कि CBP जिसमें खून का
1: अच्छा
0: मुआयना होता है
1: जी हाँ जी
0: वो
1: हाँ
0: करा सकते हैं। उससे
1: जी
0: आपको सफ़ेद खून के खलियात की सतह मालूम होती है। ल्यूकीमिया के पेशेंट में सफ़ेद खून के खलियात जैसे कि मैं बता चुकी हूँ बी
1: जी
0: लिम्फोसाइट्स और टी
1: हाँ
0: लिम्फोसाइट्स
1: जी हाँ जी
0: की
1: हाँ
0: सतह बढ़ती है।
1: अच्छा
0: एक सेहतमंद इंसान में 4,000 से 10,000 तक सफ़ेद खून के खलियात होते
1: जी
0: हैं
1: जी
0: लेकिन ल्यूकीमिया के पेशेंट्स में ये सतह 70,000, 80,000, 1,00,000 तक पहुँच सकती है। तो
1: अच्छा
0: इससे पता चलता है।
1: जी
0: अब ल्यूकीमिया किस तरह का है वो मालूम करने के लिए फ्लो साइटोमेट्री बोल के एक
1: अच्छा
0: तशखीस होते हैं। आपको पता चलता है कि ALL है, CML है, CLL है।
1: जी
0: तीसरा बोन मैरो एस्पिरेशन, एक लंबी सुई के जरिए से आपके हड्डी का गुद निकालकर उसका मुआयना किया जाता है।
1: अच्छा जी जी
0: इससे आपको पता चलता है कि आपकी बीमारी कितनी शदीद है
1: जी
0: और कैंसर आपके जिसमें पूरा फैल चुका या अर्ली स्टेज में है कौन से स्टेज में है मालूम करने के लिए आप CT, PET CT, MRI स्कैन ये सारी चीज़ों से मदद ली जाती है।
1: जी अभी आपने तशखीस के बारे में बताया, इलाज के बारे में बताएं।
0: ल्यूकीमिया का इलाज आपके ल्यूकीमिया की किस्म, आपकी उम्र
1: जी
0: और आपकी मजमूई सेहत पर मुतासिर करता है।
1: अच्छा
0: जो तरीके आजकल इस्तेमाल में हैं कैंसर के इलाज के लिए उसमें
1: जी जी
0: सबसे पहले है कीमोथेरेपी। इसमें उन अद्वियात का इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से आपके जो कैंसर सेल्स हैं
1: जी
0: वो ख़त्म होते चले जाते हैं।
1: अच्छा
0: दूसरा तरीका है इम्यूनोथेरेपी।
1: जी
0: इम्यूनोथेरेपी आपके मदाफती निज़ाम को कैंसर के खलियात से लड़ने में मदद करता है। तीसरा है टारगेटेड थेरेपी।
1: जी
0: इसमें आप सिर्फ वही सेल्स को मारते हैं जो कैंसर के हैं।
1: जी
0: तो इस थेरेपी में आपके सेहतमंद जो सेल्स है बॉडी में उन
1: जी
0: लोग को
1: अच्छा
0: कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और चौथा तरीका जो सिवियर केसेस में इस्तेमाल किया जाता है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जहां पे आपके हड्डी का गुद एक सेहतमंद हड्डी के गुद से तब्दील किया जाता है।
1: ये हीमोफीलिया भी एक मर्ज है, उस बारे में बताएं।
0: हीमोफीलिया एक बहुत कम पाए जाने वाली बीमारी है जिसमें खून आम तरीके से नहीं जमता। खून में क्लॉटिंग फैक्टर्स यानी कि खून जमने के अवामिल की मिकदार कम होती है।
1: जी
0: क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके खून के खलियात प्लेटलेट्स के साथ मिलकर खून को बहने से रोकते हैं। हीमोफीलिया एक विरासती बीमारी है, पैदाइशी होती है और
1: अच्छा,
0: तकरीबन मेल्स यानी कि मर्दों में पाई जाती है।
1: इसके अक्साम क्या है?
0: हीमोफीलिया मेजरली 3 टाइप्स का होता है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया ए ये क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से
1: जी
0: होता है, ये सबसे आम किस्म है हीमोफीलिया की। दूसरा है हीमोफीलिया बी, ये क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से होता है। और तीसरा है हीमोफीलिया सी, ये क्लॉटिंग फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी से होता है। ये एक बहुत ही नायाब किस्म है जो 1,00,000 इंसानों में सिर्फ एक को ही मुतासिर करती है।
1: हीमोफीलिया के मरीज में क्या अलामत जाहिर होती हैं?
0: जब आपके जिस्म में खून जमने के अवामिल मौजूद ना हो तो आपका खून ज्यादा देर तक या फिर ज्यादा मिकदार में बहता है। अगर बीमारी हल्की हो तो पोस्ट सर्जरी, पोस्ट ट्रॉमा या फिर पोस्ट डिलीवरी इन फीमेल्स खून ज्यादा देर तक बहता है। अगर बीमारी शदीद हो तो बिना किसी वजह के खून बहता है जैसे कि बैठे बैठे नाक से खून बहना,
1: जी
0: जिल्द के नीचे खून जमा हो जाना, हड्डियों के बीच में खून जमा हो जाना जिसको हम हीम आर्थ्रोसिस कहते हैं,
1: अच्छा
0: और गोश में खून जमा हो जाना जिसको हम मसल हेमाटोमास कहते हैं,
1: जी
0: और छोटे बच्चों में टीका लेने के बाद खून बहना। एक सेहतमंद बच्चे को देखेंगे आप तो टीका लिए बाद में यानी वैक्सीन लिए बाद में खून नहीं बहता,
1: जी हाँ जी
0: अगर
1: हाँ
0: हीमोफीलिया के बच्चे को आप वैक्सीन देंगे तो खून ज़्यादा देर तक बहता है।
1: अच्छा जी, इसका इलाज किस तरीके से करना चाहिए?
0: हीमोफीलिया का बुनियादी इलाज है कि आप क्लॉटिंग फैक्टर्स

0: जो कम मिकदार में मौजूद है उसको रिप्लेस करें। जैसे कि
1: जी
0: अगर आपके पास खून की कमी है तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, उसी तरह आप क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी है तो क्लॉटिंग फैक्टर्स को ट्रांसफ्यूज करना, यही उसका बुनियादी इलाज है। लेकिन कुछ अद्वियात के इस्तेमाल से भी खून को ज़्यादा देर बहने से रोका जा सकता है।
1: जी हीमोफीलिया के मरीज़ को अगर बरवक्त इलाज ना किया जाए तो क्या मुश्किलात पेश आती हैं?
0: अगर हीमोफीलिया के मरीज़ को वक्त पर सही इलाज ना मिले तो पेचीदगियां जैसे कि जोड़ों में खून जमा रहने से इन्फेक्शंस होना और वो पस में बदलना और शदीद आर्थराइटिस होने के चांसेस हैं।
1: जी
0: इन्फेक्शंस जैसे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, जीआईटी इन्फेक्शंस बार बार होना
1: जी
0: के इम्कान हैं। अगर सही इलाज ना किया जाए तो दिमाग में खून बहना जिसकी
1: अच्छा
0: वजह से स्ट्रोक आ सकता है, और
1: जी
0: गले या गर्दन में खून बहने या जम जाने से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि हीमार्थ्रोसिस और हेमाटोमास होने से शदीद दर्द होता है
1: जी
0: मरीज को।
1: एक तरह से ये जानलेवा मर्ज है।
0: जी बिल्कुल, अगर सही वक्त पे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ना मिले तो ये जानलेवा मर्ज है।
1: डॉक्टर उज्मा बतूल, सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताइए।
0: जी, सिकल सेल एनीमिया एक विरासती खून की बीमारी है।
1: जी
0: आपके रेड ब्लड सेल्स में जो मौजूद हीमोग्लोबिन होता है उसके दो चेन्स होते हैं,
1: अच्छा
0: अल्फा एंड बीटा।
1: जी
0: तो सिकल सेल एनीमिया में बीटा चेन जो हीमोग्लोबिन का है उसमें म्यूटेशंस हो जाते हैं,
1: जी
0: और ये बीमारी जाहिर ऐसे होती है कि एक सेहतमंद इंसान में रेड ब्लड सेल्स गोल यानी कि डिस्क शेप के होते हैं,
1: जी अच्छा
0: और सिकल सेल एनीमिया के मरीजों में रेड ब्लड सेल्स दरांती के शेप के हो जाते हैं,
1: जी
0: सिकल
1: जी
0: शेप के।
1: इसकी क्या वजूहत है?
0: अगर आप देखेंगे तो सिकल सेल एनीमिया की बुनियादी वजह ये है कि जेनेटिक म्यूटेशंस।
1: अच्छा जी, मौरूसी बीमारी है
0: जी,
1: ये।
0: मौरूसी
1: जी
0: बीमारी है, आपके जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें जीन्स का म्यूटेशन हो जाता
1: अच्छा जी जी जी
0: जिसकी वजह से आपका जो बीटा ग्लोबिन चेन है वो डिफरेंट प्रोड्यूस होता।
1: जी
0: तो अगर बीमारी जाहिर होना है तो दो के दो जीन्स खराब रहना ज़रूरी है। तो दोनों पेरेंट्स से अगर वारिस इनहेरिट करता दो भी जीन्स तो सिकल सेल एनीमिया की बीमारी जाहिर होती है, और अगर एक ही जीन अब नॉर्मल है और एक जीन नॉर्मल है तो इसको हम सिकल सेल ट्रेट कहते हैं।
1: अच्छा
0: इन लोग में अलामत जाहिर नहीं होते बट जेनेटिक म्यूटेशंस रहते हैं।
1: जी, इसके अलामत आपने कहा, इसकी तशखीस किस तरह से की जाएगी?
0: जी, सिकल सेल एनीमिया एक माइक्रोसाइटिक एनीमिया है,
1: जी
0: ठीक है, आपके रेड ब्लड सेल्स जो मामूली साइज रहता उससे छोटे होते। तो एनीमिया के सारे अलामत जैसा कि थकावट, चक्कर आना,
1: जी
0: रोज़मर्रा के काम करना मुश्किल होना और दिल का बेतरतीबी से धड़कना,
1: जी
0: पैल्पिटेशंस, पाइका और बार बार इन्फेक्शंस होना, जैसा कि अगर आप बच्चों में देखेंगे तो बार बार उन लोग को सर्दी खांसी होना,
1: जी हाँ जी
0: बार
1: हाँ
0: बार उल्टी वॉमिटिंग्स मोशंस होना,
1: जी
0: ये सारे चीज़ें होती हैं। अगर ये दरांती के जो शेप के जो सेल्स है यानी कि सिकल सेल्स
1: जी
0: आपके रेटिना यानी कि आंख के खून के रगों में जाके जम जाएं तो आपकी बीनाई भी मुतासिर हो सकती है।
1: जी
0: और अगर इसकी तशखीस सिकल सेल एनीमिया की तशखीस के लिए एक रूटीन कंप्लीट ब्लड पिक्चर यानी कि सीबीपी करने
1: जी
0: से आपको आपके हीमोग्लोबिन की सतह मालूम होती है,
1: अच्छा
0: ठीक है, और इसका मुआयना करने से आपको सेल्स दरांती के शेप के नज़र आते हैं माइक्रोस्कोप में। और दूसरा तरीका है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस,
1: जी
0: इससे आपको किस तरह का हीमोग्लोबिन है आपके जिसमें वो पता चलता है। जैसा कि अडल्ट में अगर आप देखेंगे यानी कि एक सेहतमंद मर्द में या फिर औरत में
1: जी
0: HbA टाइप का हीमोग्लोबिन रहता है,
1: जी हाँ जी
0: बच्चों में HbF यानी कि फीटल हीमोग्लोबिन रहता है,
1: अच्छा
0: वैसे ही सिकल सेल एनीमिया के मरीजों में HbS टाइप का हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और थर्ड है जेनेटिक स्टडीज, तो पता करने के लिए कि आपके जीन्स में म्यूटेशंस हुए या नहीं हुए, ये
1: जी
0: कन्फर्मेटरी होता है।
1: जी इसका बरवक्त इलाज ना किया जाए तो मरीज़ को क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं? इसका इलाज किस तरीके से किया जाए?
0: सिकल सेल एनीमिया का जो बुनियादी इलाज है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन,
1: अच्छा
0: यानी कि आपके हड्डी के गुद को एक सेहतमंद हड्डी के गुच्छे तब्दील

0: करना।
1: जी
0: दूसरा तरीका है बार बार जिसमें खून की कमी होती है तो खून चढ़ाना पड़ता
1: अच्छा
0: बच्चों को। जनरली ये बीमारी 1 साल या फिर 8 महीने की उम्र में जाहिर होती है।
1: इसमें खून की कमी भी जाहिर होती है, खून
0: जी
1: की कमी हो जाती है मरीज में जी।
0: जी
1: अच्छा
0: तो खून चढ़ाना पड़ता है। और
1: अच्छा
0: जैसा कि मैं आपको बताई कि बार बार इन्फेक्शंस होते, ये लोग की इम्यूनिटी कम रहने से लोग को बार बार इन्फेक्शंस होते,
1: अच्छा
0: तो इसका इलाज करना टाइम पे।
1: जी, अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो इसके क्या नुकसान जाहिर होते हैं एक मरीज में?
0: जी, अगर बीमारी सही टाइम पे हम मालूम नहीं कर सके और सही वक्त पर इलाज नहीं दे सके,
1: जी
0: तो ये दरांती के शेप के जो सेल्स है, ये आपके खून के रगों में, जैसा कि अगर दिमाग के खून के रगों में जम जाए तो आपको फॉलिज का अटैक यानी स्ट्रोक होता,
1: अच्छा
0: और अगर ये तिली के रगों में, स्प्लीन जिसे हम कहते हैं, उसके रगों
1: जी
0: में जाके फंस जाए तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती,
1: जी
0: और अगर ये आपके फेफड़ों में जम जाए तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, जिसको हम एक्यूट
1: अच्छा
0: चेस्ट सिंड्रोम भी कहते हैं।
1: जी
0: तो ये सारी चीज़ें एक मरीज़ में अगर वक्त पर इलाज ना मिले तो जाहिर हो सकता।
1: मौजूदा दौर में कैंसर आम होता जा रहा है, इसकी आम वजूहात क्या हो सकती हैं?
0: जैसे कि मैं आपको बताई कि खून के कैंसर को हम लुकीमिया कहते हैं,
1: जी हाँ जी
0: तो लुकीमिया में बेसिकली क्या होता बोले तो, जो आपके सफ़ेद खून के खलियात हैं वो ज़्यादा मेदार में बनते हैं और नापुख्ता रहते हैं,
1: जी जी
0: मैच्योरेशन नहीं होता। तो
1: जी
0: ये क्यों होता है, इसकी वजह दो तरह में पड़ी जा सकती है। पहला है
1: अच्छा
0: जेनेटिक म्यूटेशंस,
1: जी
0: ये जेनेटिक म्यूटेशंस बिना कोई वजह से अचानक हो सकते हैं,
1: जी
0: या फिर माहौलियाती अवामिल की वजह से भी हो सकते हैं, जैसा कि
1: अच्छा
0: स्मोकिंग, सिगरेट नोशी, ये एक मेन रीज़न है कैंसर्स
1: जी
0: होने का।
1: अच्छा
0: दूसरा टेराटोजेंस, टेराटोजेंस यानी वो चीज़ें जिससे हमारे जिसमें कैंसर होने का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं,
1: जी
0: जैसे कि बेंजीन कंपाउंड्स जो पेंट्स
1: जी
0: में,
1: हाँ
0: ग्लूस में
1: जी जी
0: इस्तेमाल होते हैं, तो वो सारे फैक्ट्री वर्कर्स जो पेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं या फिर गम इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन
1: जी
0: लोग में खून का कैंसर होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं।
1: जी
0: तीसरा, अगर आपकी फैमिली में किसी को कैंसर है तो आपको कैंसर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है।
1: दौरे जदीद में प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या इसकी ये बहुत ज़्यादा वजह बन रहा है प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर के मर्ज़ में?
0: प्लास्टिक तरह तरह के होते हैं, सो अगर प्लास्टिक ज़्यादा इस्तेमाल हो तो बेशक वो भी एक टेराटोजन है और उससे भी कैंसर हो सकता।
1: जी, खून चढ़ाने से क्या नुकसान सामने आ सकते हैं इस बारे में बताएं?
0: खून चढ़ाने के बाद जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस कहते हैं।
1: जी
0: जी, एक तो वो इन्फेक्शंस की वजह से हो सकते हैं या फिर इन्फेक्शंस के बगैर भी हो सकते हैं,
1: जी
0: या तो वो खलील मुद्दती हो सकते हैं यानी विद इन 24 आवर्स, अगर आप एक मरीज को खून चढ़ाए तो 24 घंटे के अंदर होने वाले रिएक्शंस को हम एक्यूट फेस रिएक्शंस बोलते हैं, जिसमें एलर्जीज, एनाफाइलैक्सिस, यानी कि आपके सांस लेने की जो नाली है उसमें सूजन आ जाती है,
1: अच्छा जी
0: शॉक, ये सारी चीज़ें 24 घंटे के अंदर ही मरीज में पाई जाती है। दूसरा है ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी, यानी कि खून चढ़ाने के बाद आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। फिर ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड, खून ज़्यादा मिकदार में चढ़ाने से आपके दिल पर वजन पड़ता है, जिसको
1: जी
0: हम टैको कहते हैं। खून फौरी खून चढ़ाने के बाद मरीज को जाड़ा आना, बुखार आना, जिसको हम
1: जी
0: फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। और अगर 24 घंटे के बाद मरीज के अंदर कुछ अलामत पाए जाए उसको हम डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस कहते हैं,
1: जी
0: जिसमें आयरन ओवरलोड, यानी कि आपके जिसमें ऑलरेडी आयरन सही मिकदार में मौजूद है और फिर आप खून चढ़ा रहे जिसमें आयरन सही मिकदार में है या फिर ज़्यादा मिकदार में है, तो
1: जी
0: आपके जिसमें आयरन की सतह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
1: अच्छा
0: दूसरा है ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, यानी कि आपका जिस्म बाहर का खून एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है
1: अच्छा जी
0: और तेज रफ्तार से आपके खून के सेल्स और वो बाहर के खून के सेल्स दोनों टूटना शुरू हो जाते हैं,
1: जी
0: और अगर आप खून डोनेट करें तो आपके खून को कुछ वायरसेस, कुछ बैक्टीरिया के लिए
1: जी

0: किया जाता है,
1: अच्छा
0: जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया, सिफिलिस, ताकि जब आप ये खून किसी दूसरे इंसान में चढ़ाए तो वो इंसान को ये सारे इन्फेक्शंस ना हो।
1: जी
0: इसके बावजूद कुछ इन्फेक्शंस एक बाहर का खून चढ़ाने से आपके जिस्म में हो सकते हैं, जिसको हम ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शंस कहते हैं।
1: जी आपने अभी कहा कि खून ज़्यादा चढ़ाने पर ओवरलोड होने की वजह से दिल की हरकत तेज़ हो जाती है, तो क्या हार्ट अटैक का भी बायस बनता है?
0: ज़रूरी नहीं है कि मरीज को हार्ट अटैक ही आ जाए सडन। पहले सांस लेने में दिक्कत, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, बेतरतीबी से दिल का धड़कना, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद जब एक्सेस रेंज में ट्रांसफ्यूजन हो जाए तो तब हो सकता।
1: डॉक्टर उज्मा बतूल, हमारे सामईन को छोटा सा आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे?
0: मैं अपने सामईन को एक अहम मशवरा देना चाहूँगी।
1: जी
0: जैसा कि कहा जाता है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है,
1: बेशक बेशक
0: इसलिए घर में बनाई हुई अशिया को खाइए, बाहर के खानों से, यानी कि जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्राइड फूड्स, नमकीन, ये सारे खानों से परहेज करिए। अगर आपको कमज़ोरी महसूस हो रही हो, आपका वज़न कम हो रहा हो, आपको बार बार बुखार आ रही हो, चक्कर आके गिर जाना, ये सारे अलामत महसूस हो रहे हो, तो फ़ौरन किसी माहिर डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि किसी संगीन बीमारी के आने की ये ज़ाहिरी अलामत हो सकती है।
1: जी
0: मरीज़ को अगर बरवक्त अपने मर्ज़ की तशखीस ना हुई तो वो आखिरी स्टेज पर पहुंच जाता है
1: बेशक
0: और डॉक्टर ये कहने पर मजबूर हो जाता है, ना जाना कि दुनिया से जाता है कोई, ना जाना कि दुनिया से जाता है कोई, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। अपनी सेहत का ख्याल रखें और दूसरों को भी सलाह दीजिए कि वो अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखें, और जब तक जिए भरपूर जिए।
1: बेशक जान है तो जहान है। डॉक्टर उज्मा बतूल, आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाई और आपका अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए बेहद शुक्रिया। उम्मीद है कि हमारे सामईन को खून की अहमियत वो अमराज पर काफ़ी मालूमात फरहाम हुई होंगी। बेहद शुक्रिया।
0: शुक्रिया।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर माइक पर सिलसिले तहत खून की अहमियत उनवान पर डॉक्टर उज़्मा बतूल से की गई बातचीत। शरीकी गुफ्तगू थी रोहिना फातिमा।

चाहत वो जज्बा है जो दो दिलों को जोड़ता है, जिसमें चाहने वालों की खुशी बढ़ जाती है और ये लम्हात ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात हुआ करते हैं। आइए इस पर सुनते हैं एक गीत जिसको लिया है हमने फिल्म इम्तिहान से। इस फिल्म के गीत को गाया है कुमार सानू और बेला ने।

फिल्म इम्तिहान से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। वैसे दोस्तों, चाहत पर हम बात कर रहे थे, चाहत पर मगर कोई जोर नहीं। ये वो जज्बा है जो जैसा कि दिलों को जोड़ता है, और जब इसका इजहार होता है तो ये एक खूबसूरत गुफ्तगू में तब्दील हो जाता है। ऐसा ही एक गीत आइए सुनते हैं जिसको लिया है हमने फिल्म आशिकी से। इस फिल्म के गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू ने।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म आशिकी से लिया गया ये गीत। वैसे दोस्तों चाहत ना सिर्फ इंसान को अट्रैक्ट करती है और अपनी तरफ खींचती है, जिससे आदमी खो जाता है और उसमें गुम हो जाता है और चाहता है कि ये पल थम जाए। आइए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जिसको लिया है हमने फिल्म अंजाम से। इस फिल्म के गीत को गाया है अभिजीत ने। आइए सुनें।

फिल्म अंजाम से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM रेनबो 101.9 MHz पर। आप सुन रहे हैं गीत सुरीले का तजा में कुछ सुरीले गीत। अब आइए दोस्तों सुनते हैं कि जिसको लिया है हमने फिल्म थानेदार से। इस फिल्म के गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल और बप्पी लहरी जी ने। गीतकार है इंदीवर और संगीत से सजा है बप्पी लहरी जी ने। आइए सुने।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म थानेदार से लिया गया ये गीत। वैसे दोस्तों, जब दो चाहने वाले मिलते हैं तो ये चाहते हैं कि ज़िंदगी के खूबसूरत पल यूं ही चलते रहे और ज़िंदगी में और कोई मकसद ना हो, लेकिन ये पल कायम रहे। आइए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जिसको लिया है हमने फिल्म क्रिमिनल से। इस फिल्म के गीत को गाया है अलका याग्निक जी ने।

फिल्म क्रिमिनल से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। वैसे दोस्तों कहते हैं कि किसी को अपनी बात मनवाना या कन्विंस करना अपने आप में ये एक खूबी है, और ये खूबी बेशतर लोग अपने चाहने वालों पर ज़रूर आजमाते हैं और चाहते हैं कि इनका किया गया काम पूरा हो जाए और इनकी बात मान ली जाए। ऐसा ये गीत आइए सुनते हैं फिल्म यस बॉस से। इस फिल्म के गीत को गाया है अभिजीत ने, गीतकार है जावेद अख्तर और संगीत से इसे सजाया है जतिन ललित ने। आइए सुने।

फिल्म यस बॉस से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों हम बात कर रहे थे चाहत पर। इस जज्बे से लोग ना सिर्फ करीब होते हैं बल्कि एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और यही जिंदगी को खुशगवार बनाती है। आइए इसी पर सुनते हैं गीत सुरीले गादेजा में आखिरी गीत जिसको लिया है हमने फिल्म डुप्लीकेट से। इस फिल्म के गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक जी ने।

वफा की कौन सी मंजिल पे उसने छोड़ा था, वफा की कौन सी मंजिल पे उसने छोड़ा था कि वो तो याद हमें

0: भूल कर भी आता है। जिंदगी में कुछ रिश्ते और कुछ लोग दिल में ऐसी जगह बना लेते हैं कि जुदाई के बाद भी उनकी याद बाकी रहती है, मगर इंसान को माजी की यादों में कैद होकर अपनी मौजूदा जिंदगी को जाया नहीं करना चाहिए। यादें अपनी जगह अहम हैं, लेकिन आगे बढ़ना, खुद को संभालना और अपनी जिंदगी को मकसद के साथ जीना ज्यादा जरूरी है। जो लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, उनकी अच्छी बातों को याद रखें, मगर अपनी खुशियों को उनकी याद का कैदी ना बनाएं।
1: इसी पैगाम में शब के साथ दोस्तों आज का नहरंग प्रोग्राम अब अपने अख्तिताम का पहुंचता है। कल शब 9:30 पर हम दोबारा हाजिर होंगे एक नई बस में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM रेनबो 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर में हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
3: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
2: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
3: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
2: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल

0: इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। आईएक्स पोर्टल, माई IRINN पोर्टल, .in ऑक्शन पोर्टल और एक AI संचालित हुज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come. Mr. Modi said the PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and the industry.
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
1: Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000 crore rupees at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha tomorrow. The Ministry of Coal informed that the project marks a historic milestone as the country's first commercial-scale coal-to-ammonium nitrate facility. President Draupadi Murmu today inaugurated AIIMS Bhubaneswar Satellite Centre and Mega Health Camp at the Subdivisional Hospital in Rai Rangpur. The initiative is expected to enhance access to quality healthcare services for people across northern Odisha. The President also dedicated several public welfare and infrastructure projects, including a mega integrated piped water supply project for mining affected villages in Kusumi Block. The Supreme Court today ruled that the right to walk on a demarcated footpath is a fundamental right. A bench of Justices P.S. Narasimha and A.S. Chandrukar held that a citizen's fundamental right to walk on a demarcated footpath is primary and shall have priority over movement by motorized vehicles. In a significant verdict, the apex court said it forms part of the right to movement guaranteed under Article 19(1)(d) and other fundamental rights, including Article 21, right to life and liberty. The National Testing Agency, NTA, today said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination, which is scheduled for the upcoming Sunday. In a statement, the NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. Meanwhile, the NTA has also launched an official WhatsApp channel for candidates. It said that all official WhatsApp messages will be sent only from its verified number, which is +91 78 27 98 02 87. India has slammed Pakistan.

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
1: आकाशवाणी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्र प्रथम के मुद्दे पर। तो प्रोफेसर अंशु जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो एक 12 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रही है और इसमें राष्ट्र प्रथम की अवधारणा और खासतौर पर हम जो पॉलिसी मेकिंग या नीति निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे आप किस तरह से देखते हैं कि वैश्विक परिवेश में, परिदृश्य में किस तरह से इसे एक नई दिशा दी गई है?
2: विगत 12 वर्षों में हमने भारत की यदि विदेश नीति और आंतरिक नीति की दृष्टि से देखें तो वैश्विक राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ साथ हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन है, जो सदियों पुराना है, उसको भी वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है और एक रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हमने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े परिवर्तन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब नीति निर्माण की हम दृष्टि से देखते हैं तो हमने भारत की यदि हम ब्रांड इमेज को देखें तो वो एक विगत 12 वर्षों में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर ये इमेज वैश्विक स्तर पर बनी है, जिसमें भारत को ग्लोबल साउथ का प्रणेता दूसरे देश मानने लगे हैं। और इसके पीछे कारण है, उदाहरण स्वरूप जब 2023 में हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, जिसे कि पश्चिम के शक्तिवान देशों का एक मंच माना जाता था, उसका एक डेमोक्रेटाइजेशन करते हुए हमने अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में G20 से जोड़ा। तो इस प्रकार से ग्लोबल साउथ की नेतृत्व की भूमिका में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारी पॉलिसी मेकिंग की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा जो पश्चिम के तमाम शक्तिवान देश हैं और ग्लोबल साउथ के विकासशील और अविकसित देश हैं, उनके बीच संतुलन बनाए रखने का एक पुल का काम भारत ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोपरि रखा है। तो जब बात आई कोविड की, कोविड के काले समय के दौरान हमने न सिर्फ अपने लिए 140 करोड़ हमारी आबादी के लिए हमने टीके बनाए, होम ग्रोन वैक्सीन्स बनाए, हमने दुनिया भर के देशों को, लगभग 150 देशों को हमने जीवन रक्षक दवाएं और टीके भेजे और वैश्विक स्वास्थ्य की जो कूटनीति है उसमें एक नया हमने अध्याय शुरू किया। एक रणनीतिक संतुलन हमारी नीति के माध्यम से हमने बनाए रखा। तो हमने नॉन अलाइंड की बजाय ऑल अलाइंड की नीति अपनाई, जिसमें एक ही समय में एक तरफ हम रूस के एक नेचुरल अलाय वर्षों से हैं, उस यात्रा को हम जारी रख पाए, और दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया सफल अध्याय शुरू किया। हम इसराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, लेकिन हमारी विदेश नीति में पैलेस्टीन को भी मान्यता है। तो इस प्रकार से उधर यूक्रेन के साथ भी संवाद जारी रखा, क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी की, तो ब्रिक्स की भी हमारे पास महत्वपूर्ण मेंबरशिप है। वैश्विक सम्मान में वृद्धि हुई इस नीति की वजह से, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में 30 से अधिक देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया है। और इसी से समझ में आता है कि कूटनीतिक दृष्टि से, नीतिगत दृष्टि से भारत किस तरह से एक सफल देश के रूप में आगे बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल अंशु जी, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं,

0: तो विदेश नीति के मोर्चे पर भारत के पारंपरिक और नए साझेदारों के साथ संबंधों को किस तरह से प्रभावित किया गया, क्या लगता है आपको, कैसा बदलाव रहा है, ये अच्छा बदलाव रहा है या कुछ चुनौतियां भी रही हैं?
1: ये एक बड़ा और सफल बदलाव मैं मानती हूँ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तब शीत युद्ध चल रहा था जिसमें दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। तब की स्थितियों को देखते हुए भारत ने नॉन अलाइन रहने का निर्णय लिया और तब की स्थितियों के हिसाब से वो महत्वपूर्ण था, जिसमें हम न यूएसएसआर के ब्लॉक के साथ न अमेरिका के ब्लॉक के साथ अटैच हुए, बल्कि जो विकासशील देश थे एशिया के, लेटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, उनके साथ हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से भू राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग विषयों को लेकर जहां जिसके साथ हमारी एक साझा हमारे इंटरेस्ट्स हैं या हित हैं, वहां पर उन सकारात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाए, हैंडशेक करें। तो भारत विगत 12 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन ये रहा कि नॉन अलाइन से ऑल अलाइन देश बना, और यही कारण है कि एक और रशिया के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही, हम नेचुरल अलाय हैं रशिया के। दूसरी ओर अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें कि काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को लेकर हमने विशेष तौर पर काम शुरू किया, और वहीं एक इशू बेस्ड इंगेजमेंट भी हमने कूटनीति में जोड़ा। और वो क्या है, तो अलग अलग जो मुद्दे हैं, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा का क्षेत्र हम देख लें, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या तकनीक की दुनिया को देख लें, कृषि का क्षेत्र देख लें, शिक्षा का क्षेत्र देख लें या सामरिक क्षेत्र देखें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के साथ हम जुड़े। हम लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विगत 12 वर्षों में पहली बार इतना करीब गए, हम अफ्रीका के देशों के पास गए। इन देशों के पास बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये अविकसित देश हैं। तो इनके साथ भारत ने एक रोड मैप बनाया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अलग अलग देशों के साथ शुरू की। एशिया में हमने अपने पड़ोसियों के साथ और चीन जैसे देश के साथ में रिश्तों को सामान्य करने का प्रयास किया। हालांकि चीन की तरफ से जिस तरह से हमारी सीमाओं पर लगातार चुनौतियां प्रस्तुत की, तो वहां पर फिर हम चुप भी नहीं रहे। तो सबसे हमारी यदि विगत 12 वर्षों में मैं विदेश नीति की सफलता बताऊं, तो वो ये है कि हम एक तरफ राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ, लेकिन विश्व बंधुत्व का दर्शन रखते हुए अलग अलग देशों के साथ अलग अलग अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी मल्टीपोलैरिटी को, मल्टी अलाइनमेंट को, वैश्विक सुरक्षा शांति को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर चीन जैसे देश जब आकर हमारी सुरक्षा के लिए कोई खतरा उत्पन्न करते हैं, या पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद को लगातार पल्लवित पोषित करता है, तो फिर वहां पर भारत सक्षम, समर्थ और सशक्त रूप से जवाब भी देता है। तो इसमें चुनौतियां तो निश्चित तौर पर आती हैं जब पाकिस्तान जैसा देश हमारे सामने हो, जो अपने प्रॉक्सीज को या आतंकवादी संगठनों को लगातार एक्टिव करके आगे बढ़ाते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने का काम करता हो। लेकिन दूसरी ओर द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर हमने जो साख बनाई, जो सफलता आ गई, जिस तरह से दूसरे देशों की सहायता की जब उन पर जरूरत पड़ी, तो फिर यहां पर इन चुनौतियों का समाधान भी हम निकाल पाने में सफल रहे हैं।
0: बिल्कुल, जाहिर है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कामयाबी भारत को हासिल हुई उसके बारे में अंशु जोशी जी बता रही थी। अब हम रुख करते हैं एमपी नाथैला साहब का। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अगर हम बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर, तो पिछले 12 सालों में हुए बदलावों को आप किस तरह से आंकते हैं और इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे?
2: जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो अभी एनवायरमेंट है, ये आप देखेंगे पहले काफी डिस्ट्रिक्ट में माओइस्ट का काफी प्रभाव पड़ा हुआ था, जिसके वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ था। लेकिन अब जो है, पिछले कुछ सालों में इतना जोर दिया गया माओइस्ट को ख़त्म करने के लिए, और सबसे बढ़िया बात तो ये रहा कि हमारे गृह मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया कि 31 मार्च तक 2026 में एक बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए CRPF और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काफ़ी जोर लगाकर, खासकर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जितने भी आतंकवादी थे, इनके पीछे बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लगाए, और उन ऑपरेशन में कई माओवादियों को मार गिराया, और उनको मार गिराने की वजह से इनका मनोबल इतना नीचे गिर गया कि करीबन 5,000 माओवादी पिछले 2 साल के अंदर अपने आप खुद आके सरेंडर कर गए। और सबसे बढ़िया ये इसका प्रभाव रहा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम निकाला, स्कीम निकाला, जिसमें कि उनको 50,000 रुपये दिए जा रहे थे, उसके अलावा उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी, और मकान दिए जा रहे थे,

0: इनके वजह से काफ़ी तादाद में माओस अपना जो जंगल में रिहाइश थी वो छोड़ के बाहर आए और सरेंडर कर दिए फोर्सेस के सामने, जिसके वजह से माओस का बिल्कुल खात्मा हो गया है। और यहाँ इनके नेता भी जो थे वो भी कई नेता, बड़े बड़े नेता जो कि पहले बड़े कट्टर आतंकवाद थे, उन्होंने आगे आकर अपने आप आत्मसमर्पण किया और इसके वजह से माओस तकरीबन ख़त्म ही हो गए। अभी केवल एक ही बचा हुआ है झारखंड में, जो कि पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में वो भी मारा जाएगा या वो खुद सरेंडर कर लेगा, क्योंकि अब उनको भी पता है कि अब यह चलने वाला नहीं है। उन्हीं के कई फॉलोअर्स सरेंडर कर चुके हैं और ये मिसर बेसरा के पास केवल कुछ ही आदमी बच गए होंगे
1: बिल्कुल
0: जो कि सेरेंडा फॉरेस्ट के जंगलों में घूम रहे हैं, और ऑपरेशंस भी कोबरा के बड़े जोरों से जारी है और कुछ दिनों में ये मारे जाएंगे या खुद सरेंडर कर देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में करीबन 8,000 जो मिलिटेंट्स थे, इंसर्जेंट्स थे, उन्होंने खुद सरेंडर किया, जिसमें कार्बी अंगलोंग के इंसर्जेंट्स थे, बोडोस के इंसर्जेंट्स थे और आसाम के भी इंसर्जेंट थे, और उसके अलावा मणिपुर में जो UNLF के इंसर्जेंट थे सबने सरेंडर किया है। और उनके सरेंडर करने के बाद काफ़ी मात्रा में वहाँ पर हथियार ख़त्म हो गए और इंसिडेंट भी ख़त्म हो गए, और उस वजह से काफ़ी वहाँ पर शांति फैलाया गया उस इलाके में, और उसके वजह से डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है, और इन डेवलपमेंट्स के वजह से लोगों को बहुत फ़ायदा चल रहा है। पहले यह डेवलपमेंट वगैरह रुके हुए थे क्योंकि आतंकवाद ने काफ़ी ज़ोरों से वहाँ पर कब्जा मार के रखा हुआ था, और इसको ख़त्म करने के बाद अब डेवलपमेंट जारी हो गई है, सड़कें बन रही हैं हर जगह, कनेक्टिविटी बढ़िया बन रहा है, और करीबन 70 से 80 एयर स्ट्रिप्स भी रिवाइव कर दिए गए हैं कई जगहों में, और जिनके वजह से अब वहाँ पर एयर फ्लाइट्स भी शुरू हो गए हैं। अब लोगों को काफ़ी सुविधा पहुँच रही है कि वो एक जगह से दूसरे जगह, नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं दूसरे जगहों में भी आराम से सफ़र कर सकते हैं।
1: इसके अलावा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि घरेलू मोर्चे पर अपने रक्षा उत्पादों में हम किस तरह से और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर का जो बजट है वो बड़े पैमाने पर बढ़ा है, तो उत्पादन किस तरह से हो रहा है जो भारत को और मजबूती की तरफ आगे बढ़ा रहा है?
0: इसमें तो कोई शक नहीं है कि कई जो इक्विपमेंट्स हैं वो इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं, और वो आत्मनिर्भर को अपने फोकस में रखते हुए तकरीबन 38,400 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट वो अब जो है शुरू कर दिया गया है। हमारे यहाँ से हथियार बन रहे हैं और ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा पहले जो हम हथियार मंगा रहे थे बाहर से, उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। करीबन 5,500 डिफेंस आइटम्स जो पहले हम बाहर से मंगाते थे वो हमने मंगाना बंद कर दिया, और अपने ही देश में इन सब का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया, तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे देश के इकोनॉमी को हो रहा है, और उस वजह से जो युवक हैं उन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में, तो इस तरीके से काफ़ी नौकरियां अभी लोगों को मिल रहे हैं। 15 लाख जवानों को इससे काफ़ी फायदा हो रहा है। आज ही के दिन करीबन 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, अब रुख करते हैं प्रोफेसर जोशी का। मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 12 सालों में भारत को एक रिएक्टिव नेशन के बजाय एक प्रोएक्टिव नेशन के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम उदाहरणों का जिक्र किया आपने कि एक जो ग्लोबल साउथ की एक प्रभावशाली आवाज़ बन रहा है भारत, साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की भी पहल भी मानवीय दृष्टिकोण से एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो इन सब चीज़ों का एक फायदा अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर देखें भारत को, तो वो किस तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है?
2: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में जोड़ा, क्योंकि अक्सर हम अपनी विदेश नीति की सफलता की बात करते हैं, हमने किस प्रकार के की नीतियां बनाई और किस तरह से विश्व के अलग अलग कोनों में जाकर के किस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर मित्रता के नए प्रतिमान स्थापित किए, हम इस पर तो बात करते हैं, पर इसके जो आउटकम्स हैं उसकी

0: करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ ऐसे टेंजिबल आउटकम्स हैं जो हमने अर्जित किए। उदाहरण बताती हूँ कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने पिछले दिनों भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण FTA है, और इसके साथ साथ एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट भी यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ साइन किया, और ये एशिया में भारत दूसरा देश है जिसके साथ ये डिफेंस पैक्ट EU ने साइन किया है। अब इस FTA के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार से सकारात्मक टेंजिबल दृष्टि से आउटकम्स इसके निकल के आएंगे, और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन को तो बहुत उछाल मिलती हुई दिखाई पड़ती ही है। प्रोफेशनल मोबिलिटी की दृष्टि से भी हमारे पास, हम इस वक्त दुनिया की जो यूथ आबादी है, हमारे पास 22% जो यूथ पॉपुलेशन है उसका हमारे पास शेयर है। यदि हम प्रोफेशनल्स की दृष्टि से देखें तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स का और यंग फोर्स का हम देश है, वी आर अ यंग नेशन। तो
1: बिल्कुल
0: यूरोप के इन देशों को इसी प्रकार के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो आप देखिए, अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा, इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा, हमारा जो बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड है EU के सदस्य देशों के साथ उसमें इजाफा, तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू जनरेशन में और FDIs में इजाफा, तो इससे ओवरऑल GDP में बढ़ोतरी। और फिर इसके साथ साथ जो एक रोजगार की बात आती है, क्योंकि हम एक बहुत हेविली पॉपुलेटेड देश है, तो उसमें फिर हमको एक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और ऐसा हम अलग अलग, यदि आप UAE के साथ के अपने FTA को और हमारी व्यापारिक डील को देखें, तो वहां पर भी प्रोफेशनल मोबिलिटी इज इन द सेंटर। आप यदि अभी हमारे साथ, हमारी मर्कोसुर के साथ, जो कि लैटिन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनके साथ भी FTA को लेकर के बातचीत लगभग फाइनलाइज है। पश्चिम एशिया के संकट की वजह से GCC के देशों के साथ भी हमारा FTA लगभग फाइनलाइज था। थोड़ा सा वो मुझे लगता है थमता हुआ नजर आता है वहां की स्थितियों की वजह से, पर उसमें भी प्रोफेशनल मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ। तो ये तो टेंजिबल आउटकम्स की बात हुई, मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो को आप अब जैसे यदि मैं डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाऊं, तो पहले हम एक नेट इम्पोर्टर देश के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपनी सफल विदेश नीति के चलते आज हम एक एक्सपोर्टर देश बन के इस एक डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में उभरे हैं, जिसमें अपने आसपास के कई ऐसे देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में, विशेषकर हमारे होम ग्रोन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको देख करके और चमत्कृत थे, और भारत से उन्होंने हमारे जो होम ग्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो दूसरे इक्विपमेंट है, वो लेना शुरू किया है। बहुत सुखद समाचार है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारा जो मेक इन इंडिया का और विकसित भारत 2047 का रोड मैप है, तो कुछ इस प्रकार के आउटकम्स है। उदाहरण स्वरूप वैक्सीन मैत्री, जब हमने 150 देशों को अपने यहाँ के वैक्सीन भेजे, तो उस समय के ब्राजील के, ये उदाहरण है, ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे जैर बोल्सोनारो, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने संजीवनी ले जाते हुए हनुमान जी का चित्र लगाया और हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप नहीं जानते आपने ब्राजील के लिए क्या किया। इसके बाद ब्राजील के साथ हमारा एक अलग स्तर पर स्ट्रेटेजिक डायलॉग और पार्टनरशिप शुरू हुई। तो हमने जब सोरल अलायंस और बायोफ्यूअल अलायंस की स्थापना की, इसको पायनियर किया, तो ब्राजील उसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोगी देश बनकर के सामने आया। तो ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ, पॉजिटिवली किसी दूसरे देश के लिए अच्छा करते हैं, तो उसके कुछ ऐसे आउटकम्स आते हैं जो फिर हमारी जो ये लंबी सुदीर्घ विकसित भारत की यात्रा है उसमें हमें योगदान करते हुए नजर आते हैं। मैं अमेरिका का उदाहरण दूं, अमेरिका के साथ बहुत महत्वपूर्ण डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में लेमोवा, कॉमकासा और बेका नाम के लॉजिस्टिक सप्लाईज को लेकर के हुए बड़े महत्वपूर्ण समझौते हैं, और अमेरिका ने अपना रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस भारत को देना शुरू किया, जो कि ऐतिहासिक है। तो ये काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म्स की दृष्टि से देखें या अपने सामरिक क्षेत्र में अपर हैंड की दृष्टि से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे क्वाड का मंच हो, ब्रिक्स का मंच हो, SCO का मंच हो, इप्सा हो, तो I2U2 की हम बात करें, तो भारत जिस प्रकार से अलग अलग अपने इनिशिएटिव्स के चलते आगे बढ़ा है, तो उसमें ग्लोबल साउथ की हमने आवाज मजबूत की, एक पुल के रूप में हम पश्चिम के देशों के और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में एक साथी बन करके आए, और इसके अलावा हमने हमारे मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए विकसित भारत 2047 की यात्रा के लिए बहुत सारे माइलस्टोन्स जो हैं वो अकम्प्लिश किए हैं।
1: और शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में G7 की बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीएम मोदी को एक टफर निगोशिएटर कहा, क्योंकि जब तमाम बायलेटरल ट्रेड समझौतों की जब बातचीत हो रही, तो भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि भारतीय निर्यातकों के साथ जो है किसी भी तरह के लिए उनके लिए नुकसानदायक ये डील नहीं होनी चाहिए, और भारत का सामान, मेक इन इंडिया सामान जो है बिकना, वही प्राथमिकता रही है प्रधानमंत्री मोदी की।
0: बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, आपने इस बिंदु को भी चर्चा में जोड़ा, और यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में हम देख सकते हैं कि 30 से अधिक दुनिया के देशों

0: उन्हें सर्वोच्च उनके राजकीय सम्मान से नवाजा है। भारत की क्या साख है, भारत का क्या परचम लहरा रहा है दुनिया में, इस बात का ये प्रतीक है। और बिल्कुल टफ नेगोशिएटर हैं। तो मैं आपको उदाहरण दूं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की जब हम बात करते हैं तो उसमें लगातार अमेरिका की तरफ से दो बिंदुओं पर हम पर प्रेशर बनाया गया कि एक तो हम रशिया से तेल और गैस लेना बंद करें और दूसरा ये कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दें। तो चाहे आप पश्चिम एशिया के देशों या मंचों के साथ अपने एफटीए को देखें, आप हाल ही में हुए ईयू के साथ के अपने एफटीए को देखें, आप दूसरे जो एक दर्जन भर के लगभग अपने एफटीए हैं और अलग अलग जो सेपा है, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक हमारे जो अग्रीमेंट्स हुए हैं कई देशों के साथ में, तो हमने इस बात को जब नेगोशिएशन के लिए स्टेक होल्डर्स बैठते थे तो इस बात को हमने स्पष्ट किया था कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल सेक्टर किसी के लिए नहीं खोल सकते हैं क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सेक्टर है।
1: जी
0: हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स और इससे जुड़े हुए जो हमारे भाई बहन हैं या जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, फिशरीज से जुड़े हुए जो भाई बहन हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ लघु और मध्यम उद्योग और विशेषकर जो भारतीय कला से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे नए नए बाजार मिल सके, उनको कैसे हम प्रमोट कर सकें, ये भी जब भी हमने आर्थिक और तकनीकी कूटनीति के हमने समझौते किए हैं या इसको लेकर हम आगे बढ़े तो वहां प्रधानमंत्री ने इसकी बात की है। तो आखिरकार जब अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील अनाउंस हुई तो उसमें फिर ये बात स्पष्ट होकर के आई कि इन दोनों बिंदुओं पर भारत ने किसी प्रकार का नेगोसिएशन नहीं किया। और वहीं जैसे रूस से जो तेल और गैस लेने की बात है, सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे हमें रूस से तेल और गैस मिल रहा था, तो हमको उर्सुला वॉन ने भी 2 या 3 साल पहले लगभग ये चेताया था कि हम रूस से तेल और गैस लेना बंद करें, लेकिन तब भी हमारे विदेश मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया था कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को केंद्र में रखते हुए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए वही डिसीजन लेता है जो भारतीयों के हित में है। जब हम पर प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए गए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणाएं की तो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत के लोगों को मैं इसका नुकसान नहीं उठाने दूंगा और मेरा व्यक्तिगत इसमें नुकसान हो सकता है, मुझे कीमत चुकानी पड़ सकती है, मैं इसके लिए तैयार हूं। और इसके बाद भारत ने लगातार अपने जो ये तमाम सफल विदेश नीति से मित्र बनाए हैं, तो हमने इन सबसे सहायता ली, अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया, अपने एक मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस को फिर हमने बढ़ाया और इसके चलते देखिए हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई ऐसा इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा हम पर जब प्यूनिटिव टैरिफ्स लगे और बड़ा हल्ला मचा था कि अब क्या होगा और नुकसान होगा और अब हम क्या करेंगे, लेकिन आप देखिए कि हमने 7% से ज्यादा और फिर 8% की क्वार्टरली हमने जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर की थी
1: बिल्कुल
0: जो अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्रोथ रही। तो ये इस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ में इस प्रकार के अलग अलग अकम्पलिशमेंट्स के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
1: अब हम रुख करते हैं एमपी नथालस आपका, उनसे पूछते हैं कि सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र किया कि तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रेड कॉरिडोर से ग्रीन जोन में बदलने की रणनीति अपनाई गई थी और वहां भी कामयाबी हासिल लगी, नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा संवाद और समन्वय के भी परिणाम सामने आए। तो आपसे जानना चाहेंगे जो एक और 3 बड़े ऑपरेशन हुए थे, उरी का हम जिक्र करें, बालाकोट का जिक्र करें या ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों का, तो ये 3 जो बड़े एक्शन रहे हैं इसको भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन ऑपरेशंस ने किस तरह से परिभाषित किया और क्या मायने आप देखते हैं यहां पर जो एक एक्शन रहा?
2: इसमें सबसे बढ़िया चीज ये था कि जैसे ही वो कहीं इस तरह के वारदात कर रहे थे, जैसे कि अटैक किया उन्होंने कॉन्वॉय सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर, उरी में अटैक किया और उसके बाद जो पहलगाम में अटैक किया, हमने तुरंत उसका जवाब दिया। ये नहीं कि हम रुके रहे सोचते रहे क्या करना है, लेकिन तुरंत अटैक करके हमने उनको साबित कर दिया कि इस तरीके के हरकत अगर आप करेंगे तो हमारा कार्रवाई एकदम जवाबदारी होगी। और इसमें खासकर जो पहलगाम अटैक हुआ था जिसके बाद ऑफ सिंदूर चला, उसमें करीबन 100 जो आतंकवाद टॉप के उन लोगों को मार गिराया और कई उनके आतंकवाद के जो बेस अक्रॉस द बॉर्डर थे वो भी खत्म कर दिए गए। हमारे एयरक्राफ्ट ने जाके वहां पर अटैक किया और उनका खात्मा किया, जिसके वजह से उनमें काफी ढील पना आ गया, अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। और इसके अलावा ये भी है कि जब भी वो कोशिश करते थे पहले बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए, काफी बार सफल हुए। मैं खुद वहां श्रीनगर में रहा हूँ, गए दिन हमारे एनकाउंटर होते रहते थे। अब जो है हालात काफी सुधर गए हैं और सुधरने की वजह से ये है कि वहां पर डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है और यहाँ तक कि डेवलपमेंट ट्रेन भी चलने लगे हैं, राइट फ्रॉम जम्मू से लेकर बारामूला तक चल रही हैं। पहले ये सब हम सोच नहीं पाते थे। और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखें तो मिजोरम कनेक्ट हो गया रेलवे से। पहले हमें सिलचर जाना पड़ता था, सिलचर से फिर बाई रोड जाना पड़ता था, अब जो है रोड कनेक्टिविटी

0: बढ़िया हो गया थ्रू रेलवे कि लोग सीधे ऐजवाल तक पहुंच सकते हैं दिल्ली से लेकर वहां तक। तो ये जो कनेक्टिविटी है इससे काफी बड़ा फायदा हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को आने जाने में काफी इसमें सुविधा पहुंची है। इसके अलावा ये है कि जब भी वहां से कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका हमारा इंटेलिजेंस जो है इतना रोबस्ट हो गया है कि हमें सब पता चल रहा है कि वहां पर अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है और उसी वक्त कार्रवाई कर दी जा रही है ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इससे काफी लाभ पहुंच रहा है और आने वाले दिनों में ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट कह रही है कि कश्मीर में काफी पीसफुल सिचुएशन है, अभी अमरनाथ यात्रा भी होने वाला है, काफी तादाद में फोर्सेस पहुंच रहे हैं वहां पे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वहां पर कई जिलों में जहां आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि इतना वहां पर शांति फैल चुका है कि AFSPA की बाद में जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
1: सर, क्योंकि आपने तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसलिए आपसे ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आतंकवाद और आतंकवाद को जो लोग पालते पोसते थे उस दौर में, या आज से एक दशक पहले की अगर हम बात करें, 12 साल पहले की बात करें, तो उस रुख को आप किस तरह से बदला हुआ आज पाते हैं?
0: पहले ये था कि हमारे पास इंटेलिजेंस का थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अब जो है इंटेलिजेंस इतना हमारा रोबस्ट हो गया है कि जैसे ही उनका कोई कार्रवाई वो वहां से करने की कोशिश करते हैं उससे पहले ही हम उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो हमारे जवानों पे या हमारे इलाके के अंदर आके हमला ना कर पाए।
1: इतने दिनों में भारत की एक नई डिफेंस कैपेबिलिटी भी सामने आई है, हम चाहे मेक इन इंडिया की बात करें या जिस हिसाब से डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाए जा रहे हैं, तो ये अब इनका निर्यात भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में होने लगा है, क्योंकि भारत की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। इस पे आप कितना ज्यादा जो है इजाफा मानते हैं कि दुनिया के देशों में निर्यात कितना ज्यादा बढ़ा है, उस मोर्चे पर कितनी सफलता मिली है?
0: ये जो ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, इसमें पाकिस्तान ने भी काफ़ी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इनके जितने भी अटैक करने की कोशिश किए गए वो सब विफल कर दिए, क्योंकि हमारे पास जो था एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम था जिसके वजह से उनके जितने भी अटैक हो रहे थे वो विफल कर दिए गए और हमें ज़्यादा उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर ये हमारे पास डिफेंस सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं होता जो कि एक शील्ड जैसे बन गया था तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता था, लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम के वजह से हम लोग उनको रोक पाए और वो नुकसान नहीं कर पाए।
1: प्रोफेसर जोशी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारत की उभरती हुई वैश्विक भूमिका विकसित भारत की तरफ है, इसमें आपको क्या लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को किस तरह से गति मिल रही है, और आने वाले दिनों में जो एक लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसे हम किस तरह से पूरा होते हुए देखेंगे?
2: देखिए, जब हम अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देखते हैं तो हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारत की जो सफल विदेश नीति है, विगत 12 वर्षों में हम जिस तरह से एक ऑल अलाइंड पॉलिसी पर चले हैं, इसने कैटलिस्ट की भूमिका निभाई है। तो भारत के यदि हम आर्थिक विकास की ओर देखें, तकनीकी प्रगति की ओर देखें, अब वैश्विक सुरक्षा, अपनी आंतरिक सुरक्षा की बात करें, तो हमारी विदेश नीति जो है इसके माध्यम से हम इनसे जुड़े हुए लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए लगातार अपने विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जब कूटनीति को हम देखते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड है, मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। हम किसी एक देश की हेजेमनी की नहीं बल्कि मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे वैश्विक राजनीति में लोकतंत्र को बनाए रखना है और साथ साथ हमारे देश का विकास हो और नागरिकों के हितों को प्राथमिकता मिले। तो यदि हम अपने आर्थिक मोर्चे पर जाएं और अपनी आर्थिक कूटनीति की बात करें तो विकसित भारत 2047 को यदि हम देखते हैं तो हमारी विदेश नीति का एक बड़ा जो फोकस एरिया रहा है वो FDI रहा है। किस तरह से हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, मैंने लगातार अलग अलग FTAs का उदाहरण दिया जिनके माध्यम से इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर। फिर यदि हम तकनीक की दुनिया में चले तो चाहे AI की बात करें या हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, तो AI समिट का ग्लोबल साउथ का भारत पहला देश है जिसने इस बार होस्ट करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया जिसमें देश विदेश से कई राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की और AI को लेकर के जो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने की बात चल रही है उसमें भी भारत एक प्रणेता की भूमिका निभा रहा है। फिर आप सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में चले, क्रिटिकल मिनरल्स की दुनिया में चले, तो इन सब में अपनी विदेश नीति के माध्यम से हमने जो नई मित्रताएं लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन देशों के साथ जोड़ी है, आगे बढ़ाई है, उसके माध्यम से हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर पा रहे हैं, क्योंकि ये विकसित भारत की यात्रा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इसके जरिए हमारे जो भारतीय उद्योग हैं वो मजबूत होते हैं और

0: जो हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन है उससे हम अपने उद्योगों को जोड़ते हुए एक यहाँ पर अपना एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। फिर हम ग्लोबल साउथ की आवाज प्रणेता बन के जो उभरे, तो उसमें जो लगातार हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों का डेमोक्रेटाइजेशन हो, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इसमें जो ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसके नेतृत्व की बात करते हैं, इसको आज पूरी दुनिया अपना समर्थन दे रही है। चाहे यूरोप के शक्तिवान देशों को आप देखें या लेटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के हमारे समकक्षी देशों को देखें, तो यूएनएससी जैसे संस्थानों में भारत लगातार भारत जैसे देशों के नेतृत्व की मांग कर रहा है। और अपनी स्थायी सदस्यता के लिए तो अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर गए, तो वहां स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने इस बात को फिर पुरजोर तरीके से रखा कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो एक वैश्विक समर्थन जो है वो आज हमें हासिल हुआ है, और ये विकसित भारत 2047 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारे लिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी नेतृत्व की भूमिका बढ़े। फिर यदि हम अपनी सुरक्षा की बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, तो आसपास एक फ्लक्स की सिचुएशन है, दो युद्ध चल रहे हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी लगातार तनाव बना रहता है, इन सब के बीच हमारी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार से लगातार हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे। और अभी पश्चिम एशिया की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जिस तरह से ईरान ने बंद किया और पूरी दुनिया ने संकट को झेला, 40% लगभग तेल, गैस और एलपीजी पूरी दुनिया को सप्लाई होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के माध्यम से, और कुल जरूरत का 80 से 90% अपना तेल, गैस और एलपीजी चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश मंगाते हैं। हमने लगातार 27 देशों की बजाय 41 देशों से तेल, गैस और एलपीजी मंगाने का हमने पिछले 12 वर्षों में ये काम किया, और अपनी जो ऊर्जा आयात हमारा जो है उसको हमने डाइवर्सिफाई किया। तो हमने अपनी इस प्रकार की डायनामिक ऊर्जा पॉलिसी के चलते ऊर्जा सुरक्षा हम बरकरार रख पाए, तब जबकि दूसरे देशों में 40 से 60-70% तक की मूल्य वृद्धि हुई। आप देखिए कि भारत में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रही, ऑयल गैस की हमारी निर्बाध आपूर्ति लोगों को मिली। फिर मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है उस पर एक विशेष हमारा ध्यान है, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन के उभरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में और हिंद महासागर क्षेत्र में। हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से पहले सागर डॉक्ट्रिन प्रस्तुत किया जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल था। फिर जब दोबारा मॉरिशस की यात्रा की तो उन्होंने महासागर नीति रखी जो कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल है। तो तमाम हिंद महासागर के जो लिटोरल देश हैं और जो इंडायरेक्टली जुड़े हुए देश हैं वो सब आज भारत को प्रणेता मानते हुए भारत से जुड़ रहे हैं, और हम इन देशों के साथ साझा विकास भी कर रहे हैं। और फिर विदेशों में जो अपने भारतीय प्रवासी हैं जो हमारे लिए, हमारी जीडीपी के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं योगदान तो करते ही है, हमारी संस्कृति के वाहक हैं, एम्बेसडर्स हैं, तो उनकी सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण को भी हमने एक प्राथमिकता दी है। तो आप देखिए जब जब अलग अलग विश्व में हमने संकट देखे वहां भारत ने तुरंत इवैक्यूएशन प्लान्स लॉन्च करके भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया, और जो भारतीय वहां पर रह रहे थे उदाहरण स्वरूप रशिया यूक्रेन वॉर में उनको तुरंत भारत वापस लाने की पहल और सफलतापूर्वक इसका भी अकम्प्लिशमेंट हमारी विदेश नीति की वजह से हो पाया। जब हम विकसित भारत 2047 के सामरिक लक्ष्यों को देखें, आर्थिक लक्ष्यों को देखें, तकनीकी लक्ष्यों को देखें, वैश्विक मंचों पर आगे बढ़ने के लक्ष्य को देखें, तो अपनी विदेश नीति के माध्यम से हम लगातार अपने विकसित भारत के विजन को, मिशन को साकार कर पा रहे हैं।
1: आखिर में आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्र प्रथम की नीति रही है भारत की, वो शायद वही एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर में जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं अपने नागरिकों की बात करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, तो ये एक नीति इसने देश के नागरिकों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना को किस तरह से और कितना मजबूत किया है, क्या मानती हैं?
0: ये जब हम इस नीति को देखते हैं या इस पूरे फिनोमेना को देखते हैं तो ये हमारी विदेश नीति का एक आधार स्तंभ है जिसमें हम राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण की बात करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो हमारी डिप्लोमेसी के एपिसेंटर में हैं और इसके माध्यम से हम किसी के दबाव में नहीं आते, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और विश्व मंच पर अपने हित की तो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित रखते हैं कि देश विदेश में जो अपने लोग रह रहे हैं, भारतीय प्रवासी जो हैं, उनकी सुरक्षा और उनके विकास को हम आगे बढ़ा सके। और इसमें फिर हम देखिए एक संतुलन बना के रखते हैं और इसके जरिए हम अलग अलग जो स्वभाव के देश हैं उनके साथ अपने पारंपरिक और नए तरीके के संबंधों को आगे ले जा रहे हैं। संकट के समय हम दूसरे देशों की तो सहायता करते हैं लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे लोग किसी संकट में ना फंसे। तो ये हमारी नेशन फर्स्ट की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि संकट में फंसे हुए भारतीयों को हम सुरक्षित रूप से स्वदेश लेकर के आते हैं। सबसे बड़ा बिंदु आतंकवाद पर जिस प्रकार का रुख पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनाया है, जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स टेररिज्म, तो ये अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता है। ये नेशन फर्स्ट की बात है, ये पीपल फर्स्ट की बात है, और इसमें एक बहुत ही गजब का समन्वय हमने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी रक्षा शक्ति के बीच में एस्टेब्लिश किया है, और इसके चलते, इस नेशन फर्स्ट की बात के चलते

0: आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको हमने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बड़ी दृढ़ता से रखा है।
1: बिल्कुल, तो अंशु जोशी जी और एमपी नाथाले साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी

के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

सुरीला सा सफर, सुरीली सी डगर, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मन में आपके लिए। चांद मध्यम है, आसमां चुप है, नींव की आगोश में जहां चुप है, चरागों की रोशनी भी अब सुस्ताने लगी है। हाँ, मुझे मालूम है कि आपको भी नींद आने लगी है, और नींद पर मुझे किसी का लिखा हुआ एक शेर याद आता है कि कोई किसी का होए क्यों, खुद से बिछड़े खोए क्यों, ये तौहीने इश्क हुई वो जागा, तुम सोए क्यों। तो फिलहाल सो जाइएगा, लेकिन ये गीत सुनिए क्या कह रहा है हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म ममता का ये गीत।

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में फिल्म ममता का ये गीत आपने सुना। हेमंत कुमार की आवाज एक अलग कशिश लिए हुए है। संगीतकार सलील चौधरी का कहना था कि यदि ईश्वर गाता तो उसकी आवाज हेमंत कुमार जैसी होती। यकीनन हेमंत कुमार की आवाज मोहब्बत को पहचान देती है। वैसे कभी कभी मोहब्बत किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। ये रिश्ता न कोई नाम मांगता है और ना ही वजह, बस एक जाने पहचाने से मुस्कान, एक शिद्दत की चाहत और दिल के किसी कोने में चुपके से उतर जाने का एहसास। न नाम का पता, न रिश्ते की खबर, ये अनजाना सा बंधन एक प्यारी सी आरजू है। तू अजनबी भी है और सबसे रूबरू भी है ना। न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने। फिल्म बात एक रात की का ये गीत आपके

एक महल हो सपनों का, इस गीत के साथ ही गीत मेरे मन मीत यहीं तक। कुसुम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। फिलहाल इस चैनल पर अब आपके लिए है समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा है कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के बारे में बात की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने,

परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत के इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी और सत्यापन तंत्र को मजबूत करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्विता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्विता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 59 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

आंखों में छिपे ख्वाब, अरमान और जज्बात यूं ही खामोशी से दिल तक पहुंच जाने दे। कुछ रिश्ते अल्फाजों से नहीं, नजरों से बनते हैं। अखियों को रहने दे अखियों के आसपास। बॉबी फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: महबूबा फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 12:24 और ठीक 37 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिकंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

अभी आपने धनवान फिल्म का गाना सुना, सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया हृदयनाथ मंगेशकर ने। जी हाँ, तुम्हारी आंखें देखकर एक पल के लिए लगा जैसे वक्त ठहर गया हो और आसपास की सारी हलचल कहीं दूर खो गई हो। नजरें हटाना मुश्किल था क्योंकि उस एक झलक में न जाने कितने ख्याल और कितनी भावनाएं समा गई थीं। दिल ने जब लम्हे को चुपचाप अपने भीतर सहेज लिया, जैसे कोई अनमोल याद जो बार बार याद आने पर भी नई सी लगे।

आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, हर ख्वाब को प्यार और उम्मीद के रंगों से सवारा है। आपकी मुस्कान, आपकी बातें और आपके साथ बिताए जाने वाले अनगिनत पलों की तस्वीरें इन आँखों में बसी हुई हैं। अब हर नज़र किसी मंजिल को नहीं बल्कि आपको तलाशती है। ऐसा लगता है जैसे इन आँखों का हर ख्वाब, हर इंतज़ार और हर दुआ आपसे ही जुड़ी हुई हो।

कुछ रिश्ते समय और परिस्थितियों की सीमाओं से परे होते हैं। वो ना उम्र के पैमानों में बंधते हैं, ना किसी औपचारिक परिभाषा में। ऐसे रिश्तों में बस अपनापन, विश्वास और एक दूसरे के लिए सच्चे भाव होते हैं। समय बीतता रहता है, मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन मन का जुड़ाव वैसा ही बना रहता है। ऐसा लगता है मानो दो आत्माओं के बीच एक अनकहा संबंध हो, जो हर दूरी और हर बंधन से ऊपर हो। प्रेम गीत फिल्म का गाना आपने सुना जगजीत सिंह की आवाज में। इसे लिखा इंदीवर ने और संगीत दिया जगजीत सिंह ने।

कभी कभी मन में ये एहसास उभरता है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में यूं ही नहीं आते। उनकी मौजूदगी इतनी स्वाभाविक लगती है मानो वो हमेशा से हमारे जीवन का हिस्सा रहे हों। उनकी बातें, उनका साथ और उनका अपनापन दिल को एक अनकहा सुकून देता है। तब ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत ने बड़ी नज़ाकत से दो रास्तों को मिलाया हो, ताकि सफ़र थोड़ा और खूबसूरत, थोड़ा और मायने रखने वाला बन जाए। कभी कभी फिल्म का गाना आपने सुना था मुकेश की आवाज़ में, साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने।

अदालत फिल्म का गाना आपने सुना रफ़ी और लता की आवाज़ में। गुलशन बावरा ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। जब तुम पास थे तब तुम्हारी मौजूदगी को बस एक खूबसूरत आदत समझते रहे, लेकिन दूरी ने एहसास कराया कि किसी की कमी दिल को किस तरह हर पल महसूस होती है। तुम्हारे बिना गुजरते दिनों ने सिखाया कि प्यार केवल साथ होने का नाम नहीं, बल्कि दूर रहकर भी किसी को हर पल अपने ख्यालों में बसाए रखने का नाम है। तुम्हारी यादें, तुम्हारी बातें और तुम्हारा एहसास ही वो धड़कन बन गए जो हर पल ये याद दिलाती रही कि मोहब्बत क्या होती है।

सफर फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। वक्त हुआ है 12:55 और ठीक 45 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के विषय में बातचीत की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 57 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

अभी आपने आशिक फिल्म का गाना सुना मुकेश की आवाज़ में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। सुहाने गीतों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो जीवन की भागदौड़ में भी एक छोटा सा ठहराव दे देते हैं। चांदनी रात हो या बस खामोश पल, ऐसे गीत हर मौसम को थोड़ा और खूबसूरत बना देते हैं।

एक गांव की कहानी फिल्म से आपने गाना सुना तलत की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। रात में तमाम जज्बात एक साथ उभर आते हैं, दिन की हलचल और शोर में जो बातें दिल के किसी कोने में दब जाती हैं वो रात की खामोशी में धीरे धीरे सामने आने लगती हैं। कुछ मीठी यादें मुस्कान दे जाती हैं, कुछ अधूरे ख्वाब आंखों को नम कर जाते हैं। ऐसे में दिल कभी पुरानी बातों में खो जाता है तो कभी आने वाले कल की उम्मीदों से भर उठता है। रात की तन्हाई अक्सर दिल की सबसे सच्ची आवाज सुनने का मौका देती है।

रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म से आपने गाना सुना तलत महमूद की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। तुम तो दिल की तार छेड़कर हो गए बेखबर, मगर उन सुरों की गूंज अब तक मेरे मन में बसी हुई है। तुम शायद अपनी राह पर आगे बढ़ गए, लेकिन तुम्हारी छेड़ी हुई धुन आज भी मेरी खामोशियों में सुनाई देती है। कभी मुस्कान बनकर, कभी एक मीठी कसक बनकर, वो एहसास दिल के किसी कोने में जिंदा है।

पारसमणि फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज में असद भोपाली ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 1:31 और ठीक 7 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूँ राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

नौशेरवानी आदिल फिल्म का गाना आपने सुना, लता और रफी की आवाज़ में। परवेज शमसी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने। चांद की नरम रोशनी से सजी ये सुहानी रात, जैसे मोहब्बत का कोई खूबसूरत अफसाना सुनाती है। तारों की चमक मानो आसमान पर प्रेम की कहानी।

0: देख रही हो। ऐसे में दिल यही दुआ करता है कि हर रात तुम्हारे लिए चांदनी की तरह उजली और हर ख्वाब मोहब्बत की मिठास से भरा हो।
1: ओ कली कब तक छुपेगी एक भंवरे की निगाहों से, चमक जाती है बिजली खुद ही इन गहरी घटाओं से, बरस पड़ती है शबनम आप ही ठंडी फिजाओं से। जा जा,
2: अरे जा जा
3: जा जा।

किसी से जीत कर भी हारने वाले कयामत की नजर रखते हैं लेकिन ताड़ने वाले जा अरे जा जा जा रे

ये केवल शिकायत नहीं बल्कि किसी को पूरी तरह समझ लेने का एहसास भी है। जब किसी की बातों, अदाओं और वादों के पीछे छिपे सच का पता चल जाता है, तब दिल में एक अजीब सी मुस्कान और हल्की सी कसक साथ साथ जन्म लेती है। आपने सुना सहरा फिल्म का गाना, लता और रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया रामलाल ने।

एक दिल सौ अफसाने फिल्म का गाना आपने सुना लता और रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। मेरे हर ख्याल, हर एहसास और हर दुआ में तुम्हारी ही परछाई बसती है, सुबह की पहली किरण से लेकर रात की आखिरी खामोशी तक। तुम्हारा साथ एक मधुर धुन की तरह मेरे मन में गूंजता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन की किताब का हर पन्ना तुम्हारे नाम से रोशन हो।

पिया मिलन की आस। इस फिल्म का गाना आपने सुना लता और रफी की आवाज में। भरत व्यास ने इसे लिखा और संगीत दिया एस एन त्रिपाठी ने।

वक्त हुआ है 1:54 और ठीक 41 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

जब प्यार किसी से होता है, फिल्म का गाना आपने सुना रफ़ी और लता की आवाज़ में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। समय बदलता रहा, मौसम आते जाते रहे, लेकिन दिल के किसी कोने में बसा ये एहसास कभी नहीं बदला। वर्षों की दूरी, बदलते हालात और जीवन की अनगिनत राहें भी उस स्नेह को कम नहीं कर सकीं। कुछ रिश्ते समय के मोहताज नहीं होते, वो यादों, विश्वास और अपनत्व की ऐसी डोर से बंधे होते हैं जो हर दौर में अब उतनी ही मजबूत रहती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके

0: प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के बारे में बात की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। भारत के वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का अगला उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के जॉयल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। इससे पहले वे FATF में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल के वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के उपाध्यक्ष चुने जाने को भारत के लिए एक बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का समर्थन करता रहा है। ऐसे में ये नेतृत्वकारी भूमिका वैश्विक आतंकवादी फंडिंग नेटवर्क से निपटने और गैर कानूनी वित्तीय प्रणालियों को खत्म करने के प्रयासों को और मजबूत करती है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरलम और माही में भी मंगलवार तक बारिश का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है। भारत ने पाकिस्तान को फ्रैंकनस्टाइन स्टेट यानी ऐसा देश बताया जो खुद आतंकवाद को बढ़ावा देता है और बाद में उसी का शिकार बनता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shivangi. Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Pahadpur village in Mayurbhanj district on the occasion of the president's 68th birthday. The two leaders will later address a massive public gathering marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led government of Odisha. During the program, they will launch development projects worth over 47,600 crore rupees at Rai Rangpur in Mayurbhanj. In West Bengal, Mr. Modi will participate in Paschim Banga Divas, West Bengal Day celebrations at Tarkeshwar in Hooghly district today. He is also scheduled to launch Dedicate to the Nation and lay the foundation stone of multiple development projects in the state. Mr. Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan. Under this installment, more than 18,880 crore rupees will be transferred directly into the bank accounts of over 9.44 crore farmers across the country. Prime Minister Narendra Modi disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi yesterday. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, "In the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 57 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

डांस डांस फिल्म का गाना आपने सुना अलीशा चिनॉय की आवाज में। अनजान ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। अपने भीतर छिपे हुए हर मधुर एहसास को सुरों में ढालकर गाए जा। जिंदगी की राह में कभी खुशियां मिलें कभी उदासियां, फिर भी अपनी धड़कनों की लय को थमने मत देना। प्यार उम्मीद और मुस्कान के गीत गुनगुनाते रहना, यही मधुर दान जीवन के हर पल को खूबसूरत बनाती है और हर दिन को एक नया अर्थ दे जाती है।

छोटे खिलौने फिल्म का गाना आपने सुना यशुदास की आवाज़ में। कैफी आज़मी ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। माना हो तुम बेहद हंसी, लेकिन हम भी इतने बुरे नहीं कि तुम्हारी नज़र हम पर ठहरे ही ना। हुस्न अपनी जगह बेमिसाल है, मगर दिल की सच्चाई, अपनापन और मोहब्बत का एहसास भी कम खूबसूरत नहीं होता। कभी नजरों से आगे बढ़कर दिल की आवाज भी सुनो, शायद वहां कोई ऐसी बात मिल जाए जो चेहरे की चमक से कहीं ज्यादा देर तक याद रह जाए।

अलग अलग फिल्म का गाना आपने सुना। लता और किशोर की आवाज में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। तेरे नाम के सिवा अब कुछ याद ही नहीं रहता, जैसे हर ख्याल, हर एहसास और हर धड़कन ने तुझे ही अपना ठिकाना बना लिया हो। दिन की रौनक हो या रात की तन्हाई, हर पल तेरी याद का रंग साथ चलता है। ऐसा लगता है मानो जिंदगी की किताब के सारे पन्नों पर बस एक ही नाम लिखा हो।

0: बन गई।
1: अर्पण फिल्म का गाना आपने सुना अनवर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:37 और ठीक 18 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई, मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

बदलते रिश्ते फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मेरी सांसों को जो महका रही है, बरसों बाद भी उसका एहसास वैसा ही ताजा है जैसे किसी भीनी सी हवा का झोंका चुपके से दिल को छू गया हो। वो खुशबू यादों की हर कोने में बसी हुई है जो कभी मुस्कान बनकर होठों पर आ जाती है और कभी खामोशी में दिल को गुनगुनाने पर मजबूर कर देती है।

उत्सव फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाज में। वसंत देव ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। शायद रात की इस खामोशी में कोई मीठी याद जाग उठी है, या फिर किसी अनकहे एहसास ने दिल के दरवाजे पर दस्तक दी है। बेला की भीनी भीनी खुशबू और रात का सन्नाटा मिलकर ऐसा जादू रच देते हैं कि मन अपने ही ख्यालों में खो जाता है। तब हर हवा का झोंका एक संदेश सा लगता है और हर धड़कन किसी मधुर प्रतीक्षा का गीत गुनगुनाने लगती है।

वारिस फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाज में। वर्मा मलिक ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया उत्तम जगदीश ने। वक्त हुआ है 2:57 और ठीक 36 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही फिरोज आलम के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

अर्थ फिल्म से आपने ये गजल सुनी। इसे गाया जगजीत सिंह ने और इसे लिखा राजेंद्र नाथ रहबर ने, संगीत दिया जगजीत सिंह ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो दिन की पश्चिम बंगाल यात्रा पर जाएंगे। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठित होने के बाद ये उनकी पहली यात्रा है। इस यात्रा के दौरान वे हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे, कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्वदेश में निर्मित तीन युद्धपोत दूनागिरी, अग्रे और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवरब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट

0: कंक्रीट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के बारे में बात की। भारत के वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का अगला उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के जाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे जो जुलाई 2025 से इस पद पर कार्यरत हैं। श्री अग्रवाल वर्तमान में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले भी वे FATF में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं। ये फैसला 17 से 19 जून तक हुई FATF की बैठक के दौरान लिया गया। विदेश मंत्रालय ने संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल के वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के उपाध्यक्ष चुने जाने को भारत के लिए एक बड़ी जीत बताया है। लंदन के पास बेडफोर्डशायर इलाके में दो ट्रेनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। लंदन के टाइम्स अखबार ने बताया है कि बेडफोर्ड अस्पताल के कर्मचारियों को लगभग 50 घायलों के बारे में सूचित किया गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि दोनों ट्रेनों की टक्कर में मारे गए व्यक्ति के परिवार के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर वक्त हो चुका है ठीक 3:11 और 13 सेकंड।

दो सितारों का जमीन पर है मिलन आज की रात। कोहिनूर फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में। और दोस्तों कहते हैं कि फिल्में हैं जो हमारे

समाज का आईना होती है और फिल्में उन्हीं विषयों पर बनती है जो हमारे समाज में ज्वलंत मुद्दे होते हैं। ऐसे ही खूबसूरत मुद्दों पर, उन्हें खूबसूरत कहें या घटनाएं कहें, ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा समाज उसे जागरूक हो इन फिल्मों के ज़रिए, और यही क्लासिक दौर यानी गोल्डन एरा के फिल्मों में दिखाया जाता था, चाहे वो गांव का माहौल हो या शहर का। इन तमाम चीज़ों को बड़ी खूबसूरती से दर्शाया जाता था। ऐसी ही एक फिल्म आई थी 1959 में, धूल का फूल। धूल का फूल यश चोपड़ा साहब के निर्देशन में बनी थी और उसका निर्माण भी खुद बी आर चोपड़ा साहब ने किया था। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था माला सिन्हा ने, राजेंद्र कुमार, नंदा, अशोक कुमार, मनमोहन कृष्ण, लीला चटनीस, मोहन छोटी, जगदीश राज वगैरह, और साथ ही साथ जड़ी ईरानी ने। इस फिल्म के गीतों को लिखा साहिर लुधियानवी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा इन दत्ता ने। इस फिल्म में 8 नगमे थे जो बेहद खूबसूरत थे। कहानी का एक हिस्सा अब्दुल रशीद की कहानी है, जो एक मुस्लिम व्यक्ति है और एक अवैध हिंदू बच्चे को पालता है, उसका पालन पोषण करता है। एक जगह उनकी कहानी में क्लासिक गीत, जिससे हम आपस में मिलजुल एक समुदाय दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का पैगाम देता है, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये बेहद खूबसूरत नगमा इसे फिल्म का है, जो फिल्म की कहानी और संभवतः इसके पूरे संदेश का प्रतीक बन जाता है। उसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। धूल का फूल, इस फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा आपके लिए मोहम्मद रफ़ी साहब, माफ कीजिएगा, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आपके लिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक।

ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज़ आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल हमराही में। और आज आपका हमराही मैं हूं आपके साथ लेकर बेहद खूबसूरत नगमों को, गोल्डन एरा के उन चुनिंदा नगमों को, उन गीतों को जो आपके दिल के बेहद करीब है। ये उस दौर के नगमे हैं जो हिंदी सिनेमा के बहुत ही खूबसूरत दौर में से हम चुन कर लाए हैं। और अब वक्त है कि हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर के एक बेहद खूबसूरत और सदाबहार गीतों को हम आपको सुनाएं। प्यार की मासूमियत, शरारत और दिल की धड़कनों को बयां करता ये गीत आज भी सुनने वालों के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं। फिल्म आवारा का ये यादगार गीत, जिसके संगीतकार हैं शंकर जयकिशन साहब और इस गीत को लिखा है शैलेंद्र साहब ने, शंकर जयकिशन साहब की धुनों से सजिया ये नगमा बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है और इसे अपनी मधुर आवाज़ों में अमर बनाया है लता मंगेशकर जी और मुकेश साहब ने। तो आइए सुनते हैं रोमांस और नज़ाकत से भरपूर कालजयी नगमा दम भर जो उधर मुँह फेरे। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर

नया दौर के नगमे के लिए बेहद लोकप्रिय नगमा उड़े जब जब जुल्फे तेरी कुंवरियों के दिल मचले। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही, और हमराही के इस बेहद खूबसूरत महफिल में मैं हूं आपका हमराही फेरोज, और आपके लिए उन चुनिंदा नगमों के साथ हाजिर हैं गोल्डन एरा के क्लासिक दौर के सुनहरे दौर के उन खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हैं। दोस्तों, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो वक्त की सीमाओं को पार कर, वक्त की सीमाओं को, वक्त के बंधन को तोड़कर सीधे दिल में उतर जाते हैं, और ऐसा ही एक बहुत ही मधुर और रोमांटिक गीत जो रात की खामोशी, प्यार की नज़ाकत और भावनाओं की गहराई को बेहद खूबसूरती से अभिव्यक्त करता है, और वो नगमा है 1956 में प्रदर्शित फिल्म चोरी चोरी का ये यादगार नगमा, जिसके गीतकार शैलेंद्र साहब हैं और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है इस गीत को शंकर जयकिशन साहब की जोड़ी ने। अपनी मधुर धुनों से इस गीत को अमर बना दिया। इस गीत को अपनी सुरीली आवाजों से सजाया है लता जी और मन्ना डे साहब ने। तो आइए इस प्यार और संगीत से सराबोर इस खूबसूरत रात का आनंद लीजिए इस बेहद खूबसूरत नगमे के साथ, और सुनिए फिल्म चोरी चोरी का ये बहुत ही प्यारा और सदाबहार नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आकाशवाणी दिल्ली का एफ एम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है आपकी अपनी हमराही की, और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं, यानी आपका दोस्त फिरोज। बात अब एक ऐसे फिल्म की जो गोल्डन एरा की बेहद खूबसूरत फिल्मों में से एक है। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग की बात हो और फिल्मी गीतों की चंचलता, मस्ती और अनोखे अंदाज का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। यकीनन गोल्डन एरा के जो नगमे हैं, क्लासिक दौर की जो फिल्में हैं, वो बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारी हैं। उन्हीं फिल्मों में से अब एक बहुत ही प्यारा गीत, जिसमें अपने दिलकश बोल, आकर्षण धुन और जोशीले अंदाज में सुनने वालों के दिलों में खास जगह बनाई। साल था 1955 का। 1955 में प्रदर्शित हुई थी राज कपूर साहब के निर्माण निर्देशन में फिल्म श्री 420। इस फिल्म में राज कपूर साहब ने बेहद खूबसूरत अभिनय भी किया था। उसी फिल्म का ये लोकप्रिय गीत, जिसको लिखा है शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने, इसकी यादगार धुनें सीधे दिल में दस्तक देती है। गीत को अपनी शानदार आवाजों से सजाया, बनाया मन्ना डे साहब और आशा जी ने। तो आइए सुनते हैं फिल्म श्री 420 का वही चुलबुला और सदाबहार नगमा, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफ एम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

फिल्म ताजमहल की इसी कव्वाली के साथ, जिसमें आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी साहब, मन्ना डे, आशा भोसले और मीना कपूर की, इन्हीं आवाज़ों के साथ मुझे यानी फ़िरोज़ को अब दीजिए हमराही से इजाज़त। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूँगा लेकर अगला प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी आज से दो दिन की पश्चिम बंगाल यात्रा पर रहेंगे। राज्य में भाजपा सरकार गठित होने के बाद ये उनकी पहली यात्रा है। इस यात्रा के दौरान वे हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे, कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्वदेश में निर्मित

युद्धपोत, दूनागिरी, अग्रे और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के बारे में बात की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। लंदन के पास बेडफोर्ड शायर इलाके में 2 ट्रेनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। लंदन के टाइम्स अखबार ने बताया कि बेडफोर्ड अस्पताल के कर्मचारियों को लगभग 50 घायलों के आने की आशंका के बारे में सूचित किया गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि दोनों ट्रेनों की टक्कर में मारे गए व्यक्ति के परिवार के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। दोहा डायमंड लीग में भारत के स्टार ट्रैक एंड फील्ड एथलीट और जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4th स्थान पर है। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिससे वे अपने सीजन के पहले इवेंट में 4th स्थान पर रहे। श्रीलंका के स्टार और विश्व शीर्ष खिलाड़ी रमेश थरंगा पथिरागे ने 88.68 मीटर के थ्रो के साथ खिताब जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11 और 12 सेकेंड, और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा का, और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त फेरोज़। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। दोस्तों, हम सब की ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं।

लेकिन उन तमाम मुश्किलात, उन तमाम परेशानियों से निकलकर जब आप एक अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, तब वो तमाम परेशानियां और तमाम मुश्किलात बिल्कुल बहुत ही छोटी लगने लगती हैं। और तभी तो कहते हैं कि ज़िंदगी हर दिन एक नया अवसर देती है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है, उसे पहचानना चाहिए। मुश्किलें जीवन की परीक्षा है, सज़ा नहीं। ये हमें और मजबूत बनाती है। और जो व्यक्ति, जो इंसान अपने सपनों पर विश्वास करता है, वही उन्हें हकीकत में बदल पाता है। और यही आज हम अरुणिमा की इस महफिल में ऐसे ही मौजूदात पे बात करेंगे, ऐसे ही बातों से हम इस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। और कहते हैं हमारे जीवन का एक अनमोल हिस्सा होता है, जो वो होता है हमारा दोस्त, हमारा अपना कोई ख़ास जो हमारे दिल में बसा होता है। वो सिर्फ सुख के साथ ही नहीं, बल्कि कठिन समय में हमारा सहारा भी बनते हैं। एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा साथी खुशियों को बढ़ाता है और दुखों को हमेशा कम करता है। ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना करते वक्त ये दोस्त हमें हिम्मत, मार्गदर्शन और भावनात्मक सहयोग देते हैं। और शायद इसीलिए हम उसके बेहद करीब होते हैं और उस पर सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल इस नगमे की तरह।

तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्तनक में लुटाता रहूं। जी हाँ, अगर आपके साथ आपका साथी हो, आपका अपना हो, तो फिर आप यूं ही हंसते मुस्कुराते जीवन को आगे बढ़ाते हैं और जीवन की खुशियों को बहुत ही एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। ज़िंदगी इसी का नाम है, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते आगे बढ़ते रहें। यह नगमा था फिल्म हमराज से, और इस गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा था रवि ने। महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में यह नगमा था फिल्म हमराज का। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, ये ज़िंदगी बेहद खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है, और इस प्यारी ज़िंदगी में हम बहुत सारे ऐसे वक्त से गुज़रते हैं, बहुत सारे ऐसी मुश्किलात से भी गुज़रते हैं, जहाँ पर ऐसा लगता है कई बार कि कोई अपना ना है, अपना कोई है ही नहीं, बल्कि बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। लेकिन इन तमाम परेशानियों के बाद कोई ना कोई शख्स ऐसा होता है, चाहे वो अपना हो या कोई पराया, लेकिन उस वक्त आपकी मदद करता है, आपका हाथ थामता है, आपको अपने कदम से कदम मिलाकर खींचते हुए आगे लेकर जाता है, तो फिर ऐसा लगता है कि वो आपकी दुनिया बन गया हो। और जब वो आपकी दुनिया बन जाता है, तो उसकी हर खुशी हर गम में आप हमेशा शामिल होते हैं, उसके आसपास हमेशा उसके इर्द गिर्द रहते हैं, और गाते हुए गुनगुनाते हुए बाकी बचे वक्त को बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाते हैं। इस नगमे के साथ फिल्म प्रोफेसर प्यारेलाल से हम आपके लिए

कराए हैं किशोर कुमार साहब और मनहर उदास की बहुत ही प्यारी आवाजों में, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी भाई ने।

जी हाँ, गाए जा और मुस्कुराए जा, जब तक ये फुर्सत दे ये ज़माना। यकीनन जब तक ये जान में जान है, जब तक आप मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और ज़िंदगी को खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाते रहें। ज़िंदगी में बेहद मुश्किलात, बेहद परेशानियाँ भले ही आए, लेकिन उन सब का डटकर मुकाबला करना हम सब की ज़िम्मेदारी है, आपकी भी ज़िम्मेदारी है। और इस ज़िम्मेदारी से हम सब मुकर नहीं सकते, क्योंकि इन तमाम मुश्किलात से निकल कर के इंसान एक परिपक्व और समझदार और साथ ही साथ एक बेहतर इंसान बनता है। तभी तो हम ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं खुशियों के साथ, मुस्कुराते हुए और दूसरों की परेशानियों को समझते हुए। आप भी दूसरों की परेशानियों को समझते हैं, मुश्किलात को समझते हैं, तब आप भी एक अच्छे इंसान बनते हैं। इसी तरीके से हम सब मिलजुल कर इस जीवन को आगे बढ़ाएं खुशियों के साथ, मोहब्बत के साथ। रफ़ी साहब की आवाज़ में ये अगला नगमा ऐसी ही बातें कहता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फिरोज़ आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं अरुणिमा की इस दिलकश महफिल में जिसमें आप और हम मिलकर चल रहे हैं एक बेहद खूबसूरत सफ़र पर जहां पर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक बातें प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी की और ज़िंदगी को बड़ी ही खूबसूरती से आगे बढ़ाने की हो रही है। दोस्तों कहते हैं कि ज़िंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि रास्ते धुंधले हो गए हैं, मंजिल दूर होती जा रही है और कोई हमें समझ

जाना नहीं, लेकिन याद रखिए हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। प्यार, उम्मीद और विश्वास, ये वो तीनों ताकतें इंसान को फिर से जीना सिखाती है। आज का अगला नगमा उम्मीद की आवाज़ है, एक ऐसी पुकार जो दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचती है। और ये नगमा है साल 1959 में आई फिल्म नील कमल का। ये अमर नगमा महान शायर साहिर लुधियानवी के शब्दों से सजा है और संगीतकार रवि की मधुर धुनों में ढाला है। इसे अपनी जादुई आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने। तो आइए आप भी किसी सपने, किसी अपने या खुद अपने बेहतर जिंदगी की तलाश में हैं तो इस गीत को दिल से सुनिए, क्योंकि कभी कभी एक गीत भी हमें आगे बढ़ने की नई वजह दे जाता है। आइए उसी नगमे के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल में है।

मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में ये नगमा था फिल्म नील कमल से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल सजी है अरुणिमा की, और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल में हम बातें कर रहे हैं जिंदगी से जुड़ी हुई, प्यार मोहब्बत की, और मुश्किलात से बाहर निकलकर जिंदगी को आगे बढ़ाने की। दोस्तों कहते हैं कि जीवन की राह हमेशा आसान नहीं होती, कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि मंजिल दिखाई नहीं देती, रास्ते धुंधले लगते हैं और मन निराशा से भर जाता है, लेकिन ऐसे ही पलों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी हमें आगे बढ़ने की ताकत दे सकती है, और वो छोटी सी किरण एक शब्द हो सकते हैं, एक नगमा हो सकता है, एक बोल हो सकता है, या किसी का साथ हो सकता है। याद रखें, जब जीवन में कोई रास्ता नजर ना आए तब हिम्मत, विश्वास और सपनों का साथ हमारी सबसे बड़ी पूंजी बन जाते हैं। कहते हैं कि संघर्ष ही वो शिक्षा है या वो शिक्षक है जो हमें मजबूत बनाता है और हमें अपने भीतर छुपी शक्ति का एहसास दिलाता है, अपने अंदर छुपी ताकत का एहसास दिलाता है। इन्हीं भावनाओं को बेहद खूबसूरती से अभिव्यक्त करता है साल 1964 की एक फिल्म दोस्ती का ये अमर गीत, जिसको लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब की जोड़ी ने। आवाज है मोहम्मद रफी साहब की, और यह नगमा जो फिल्माया गया है दो दोस्तों पे, वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है, ये सीधे दिल पर दस्तक देता है।

फिल्म दोस्ती का यह नगमा था आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रफ़ी साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में, और इस फिल्म का नगमा सीधे दिल पे दस्तक देता है। ये फिल्म भी बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, अपने दौर की दो ऐसे दोस्त की कहानी जो हमेशा याद रह गई। दोस्तों, ज़िंदगी एक खूबसूरत सफ़र है। इस सफ़र में कभी खुशियों की बहार आती है तो कभी इम्तिहानों की गर्द, लेकिन जो लोग अपने दिल में मोहब्बत, उम्मीद और यकीन का चिराग रोशन रखते हैं या रोशन करते हैं, उनके रास्ते कभी तारीख नहीं होते, यानी अंधेरा नहीं होता वो रास्ता। रिश्तों की गर्माहट, अपनों का एहसास और दिलों की कुर्बत इंसान को हर मुश्किल घड़ी में हौसला देती है। मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि वो ताकत है जो टूटे हुए अरमानों को फिर से परवान या परवाज देना सिखाती है। आज का ये अगला नगमा भी कुछ ऐसा ही है। मोहब्बत और ज़िंदगी किसी खूबसूरत पैगाम को अपने सुरों में समेटे हुए हैं। फिल्म अपना भी कोई होता गया ये दिलकश नगमा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, सुरेश वाडेकर साहब और सुलक्षणा पंडित की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफ एम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपके लिए है।

मुकेश साहब की इन्हीं आवाज़ों के साथ मुझे यानी फ़िरोज़ को अब दीजिए इजाज़त। अरुणिमा से अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूँगा लेकर भोर सुहानी। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज से दो दिन की पश्चिम बंगाल यात्रा पर रहेंगे। राज्य में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनने के बाद ये उनकी पहली यात्रा है। इस यात्रा के दौरान वे हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे और स्वदेश में निर्मित तीन युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपये की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवरब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्रालय ने संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल के वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुने जाने को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया

0: पोस्ट में कहा कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त करने की नीति का समर्थन करता है। ऐसे में ये नेतृत्व भूमिका आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय प्रणालियों को खत्म करने के प्रयासों को और मजबूत करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी का उल्लेख किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि एक महत्वपूर्ण फैसले में ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। लंदन के पास बेडफोर्डशायर इलाके में 2 ट्रेनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के स्टामर ने हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दोहा डायमंड लीग में भारत के स्टार ट्रैक एंड फील्ड एथलीट और जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतन में 4th स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने 3रे प्रयास में 85.69 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिससे वह अपने सीजन के पहले इवेंट में 4थे स्थान पर रहे। वहीं श्रीलंका के स्टार और विश्व शीर्ष खिलाड़ी रोमेश थनंगा पथिरागे ने 88.68 मीटर के थ्रो के साथ खिताब जीता। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका ग्रुप डी के एक मैच में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट चरण में पहुंच गया है। कैमरून बर्गेस के आत्मघाती गोल और एलेक्स फ्रीमैन के हेडर से अमेरिका ने पहले हाफ में ही 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। 2 मैचों में 2 जीत के साथ अमेरिका नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई करने वाली मैक्सिको के बाद दूसरी टीम बन गई है। फुटबॉल विश्व कप में आज 4 मैच होने वाले हैं। ग्रुप बी के मैच में स्कॉटलैंड का मुकाबला मोरक्को से और ग्रुप सी के मैच में हैती का सामना ब्राजील से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शिवांगी। Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Paharpur village in Mayurbhanj district on the occasion of the president's 68th birthday. The two leaders will later address a massive public gathering marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led government of Odisha. During the program, they will launch development projects worth over 47,600 crore rupees at Rai Rangpur in Mayurbhanj. In West Bengal, Mr. Modi will participate in Paschim Banga Divas, West Bengal Day celebrations at Tarkeshwar in Hooghly district today. He is also scheduled to launch Dedicate to the Nation and lay the foundation stone of multiple development projects in the state. Mr. Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan. Under this installment, more than 18,880 crore rupees will be transferred directly into the bank accounts of over 9.44 crore farmers across the country. Prime Minister Modi dispersed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, "In the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation, and uphold the highest standards of quality." He said India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation, and entrepreneurship in the years to come. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has stressed that India must optimize relationships across geographies while pursuing its national interests, strategic autonomy and multipolarity in a turbulent world. Speaking at the India-US Forum 2026 in New Delhi last evening, Dr. Jayashankar spoke about the deepening India-US partnership across domains, even as both nations navigate its issues and complexities. He added that as India rises, its interests will expand and diversify. India's senior bureaucrat Vivek Agarwal has been selected as the next vice president of the Finance

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 5:11 और 5 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का। और भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं, यानी आपका दोस्त फिरोज़। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। और दोस्तों, हम सब आज एक नई सुबह में कदम रख चुके हैं और एक नए दिन का आगाज करने जा रहे हैं, क्योंकि ये नया दिन हमें हर रोज एक नई ऊर्जा, नई उमंग और नई रोशनी के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हर अंधेरी रात के बाद एक नए दिन की शुरुआत होती है और एक नया दिन जब आता है तो फिर जिंदगी में एक नई उम्मीदें भी लेकर आता है। और इसी नई उम्मीद के साथ हम भी आज के इस सफर पर चलेंगे। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल के साथ आप भी हमारे साथ आए, इस सफर में जुड़े और अपने सफर को आसान बनाएं गाते गुनगुनाते हुए बहुत ही खूबसूरत नगमों के साथ। पहला नगमा आपके लिए अय्याश फिल्म का, यशुदास की बहुत ही प्यारी आवाज में, ये सुबह सुहानी। यकीनन ये सुबह बहुत ही सुहानी है, बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि परिंदे चहचहाने लगे हैं और जग चुके

चुके हैं और हमारे आसपास का माहौल भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है इस वक्त। तो आइए आज के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं अयाश फिल्म के इसी नगमे के साथ, इस उदास की बहुत ही प्यारी आवाज़ में।

यशोदास की आवाज़ में ये नगमा था फिल्म अय्याश का, बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, जो हमें प्रेरणा देता है ज़िंदगी को आगे बढ़ने की, मुश्किलात से आगे निकलने की, क्योंकि हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ आती है और हर सुबह हमें एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। दोस्तों कहते हैं कि ज़िंदगी कभी एक सी नहीं रहती, कभी कामयाबी के फूल खिलते हैं तो कभी इम्तहानों की धूप सफ़र को मुश्किल बना देती है, मगर जो लोग हौसले का दामन थामे रखते हैं वे हर मुश्किल को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना लेते हैं। जिंदगी का असली मतलब ठहर जाना नहीं बल्कि हर हाल में आगे बढ़ते रहना है, गिरना, संभलना, सीखना और फिर मुस्कुराकर अपनी जिंदगी की तरफ बढ़ना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत है। आज का अगला ये गीत यही पैगाम देता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, सफ़र जारी रहना चाहिए, सफ़र चलते रहना चाहिए, क्योंकि रुक जाना ज़िंदगी नहीं, चलते रहना ही ज़िंदगी की पहचान है। फिल्म शोर का ये प्रेरणादायक नगमा गीतकार है इंद्रजीत सिंह तुलसी की सोच और ज़िंदगी के फ़लसफे को बखूबी बयान करता है। इसे अपनी बुलंद और दिलकश आवाज से सजाया है मन्ना डे साहब और महेंद्र कपूर साहब ने। तो आइए अपने दिल में नई उमंग, नया जज्बा और नई उम्मीद जगाएं। अगर राह में मुश्किलें आए तो उनसे घबराएं नहीं, क्योंकि हर सफर का अपना एक मकसद होता है, बिल्कुल इस नगमे की तरह।

जी हाँ, जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम, जिंदगी इसी का नाम है, बस चलते रहें आगे बढ़ते रहें, जिंदगी में खुशियाँ बिखेरते रहें, अपनों के साथ साथ दूसरों को भी साथ लेकर बढ़ते रहें। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी का सफर सिर्फ मंजिल पाने का नाम नहीं बल्कि दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ने का भी नाम है। जब इंसान अकेला चलता है तो उसकी रफ्तार तेज हो सकती है, लेकिन जब लोग मिलकर चलते हैं तो मंजिल आसान हो जाती है और कामयाबी की राहें और भी रोशन हो जाती हैं। इत्तेहाद, भाईचारा और आपसी ताउन ऐसी ताकतें हैं जो बड़े से बड़े चैलेंज को भी छोटा बना देती है। जब हाथों में हाथ हो, दिलों में भरोसा हो और इरादों में मजबूती हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता लंबा नहीं लगता। आज का ये अगला गीत